0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: والطور وكتاب مسطور
3: कोह तूर की कसम और किताब की जो लिखी हुई है।
2: في رق منشور
3: कुशादा औरात में।
2: والبيت المعمور
3: और आबाद घर की।
2: والسقف المرفوع
3: और ऊंची छत की।
2: والبحر المسجور
3: और उबलते हुए दरिया की।
2: إن عذاب ربك لواقع
3: कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक होकर रहेगा।
2: ما له من دافع
3: और उसको कोई रोक नहीं सकेगा।
2: يوم تمور السماء مورا
3: जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपाकर।
2: وتسير الجبال سيرا
3: और पहाड़ उड़ने लगे ऊन होकर।
2: فويل يومئذ للمكذبين
3: उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है।
2: الذين هم في خوض يلعبون
3: जो खौज बातिल में पड़े खेल रहे हैं।
2: يوم يدعون الى نار جهنم دعا
3: जिस दिन उनको आतिश जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे।
2: هذه النار التي كنتم بها تكذبون
3: यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे।
2: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون
3: तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता।
2: इस्लाम

जहां दुनिया का हर आसाइश हासिल है, इसके बावजूद यहाँ खुदकशियां बहुत ज्यादा होती हैं, जरायम लोगों के अंदर अखलाकी जरायम बहुत ज्यादा होते हैं, और इससे बढ़कर और क्या कि इंसान जो है आज ये तमन्ना करता है कि वो कुत्ते की शक्ल बन जाए, कुत्ते की तरह से बन जाए। इस पर आज तंजीमें कायम हो चुकी है कि इंसान कुत्ता होने पर फख्र करता है। तो ये इंसान के अंदर ये तनजुली, इंसान के अंदर ये घटियापन, इंसान इतना ज्यादा घिर जाता है कि वो इंसान होने को अपने लिए आर समझता है, वो समझता है वो कुत्ता हो, वो समझता है बिल्ला हो। तो ये चीज आज इंसान को इस किस चीज ने पहुंचाया, सिर्फ इस वजह से कि वो ईमान की नियामत से महरूम है, ईमान की नियामत से महरूम है। और ईमान के तो ये जो है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वा इन कानु मिन क़ब्ल लफी ढलाल मुबीन, इस्लाम के लाने से पहले, आप पर ईमान लाने से पहले सही गुमराही अंधेरे में थे। तो अंधेरे में कुछ पता नहीं होता आदमी को कि वो क्या कर रहा है, क्या उसके लिए नुकसान है, क्या उसके लिए फायदा है। तो मुसलमानों आज इस मुनासिबत जहाँ रबीउल का महीना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इसके वलादत के वाकयात और इसके लिए प्रोग्राम मनाए जाते हैं, इसके लिए लाजमी है कि हमारे जो मुसलमान जो है जितने हैं छोटे बड़े इस बात पर सबसे पहले शुक्र अदा करेगी अल्लाह ताला के, अल्लाह ने आपको इस नबी का उम्मती बनाया है। इस पर आप जितना शुक्र करेंगे इतना कम है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और शुक्र अदा करने की भी जरूरी है कि पर आपकी इत्तबा भी करें, और आपसे जो है मोहब्बत का जो है इजहार करने के लिए जरूरी है कि आपकी इत्तबा की जाए। इत्तबा ये बुनियादी चीज है कि मोहब्बत के इजहार के लिए, अगर जो है इत्तबा करने के बगैर कोई आदमी मोहब्बत का ऐलान करता है तो वो मोहब्बत जो है अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होती है। अल्लाह ताला के यहाँ वो मोहब्बत आपकी काबिल कबूल होगी जिस मोहब्बत के पीछे जो है इत्तबा हो, आपकी फरमाबरदारी हो। और इसलिए अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, आप इनसे कह दो तुम अल्लाह से भी अगर मोहब्बत का इजहार करते हो और ऐलान करते हो फत्तबिउनी, तो तुम मेरी इत्तबा करो, मेरे लक्ष्य कदम चलो, युहिब्बुकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके किसी अकीदे की वजह से आपके सामने से अल्लाह से मोहब्बत करे, तो उसके लिए जरूरी है कि नबी की इत्तबा करनी पड़ेगी। और कुरान में अल्लाह ताला बार बार ये फरमाते हैं वमा अरसलना मिन रसूलिल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे रसूलों को इसलिए भेजता हूँ कि लोग उनकी इत्तबा करें। तो इत्तबा ये बहुत अहम चीज है, इसके लिए आज मुसलमानों को अहद करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में अपने नबी की इत्तबा करेंगे, और नबी की जब इत्तबा करोगे, नबी के नक्श कदम पर जब चलोगे, तो उसी में फिर खैर ही खैर है। आज लोग बहुत परेशान हैं मादियत की दुनिया में, मादे की फरावानी होने के बावजूद लोग परेशान हैं। कोई परेशान है अपने बच्चों से, कोई परेशान है अपनी सेहत से, कोई परेशान है अपनी बीवी से, या हर तरह की परेशानी है। इन सारी परेशानियों का हल सिर्फ सिर्फ इसमें है, पर सबसे पहले तो परेशानियां आती भी इसी वजह से हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीर से आपकी जो है जो सीरत पर अमल करने से इनहराफ किया जाता है, आपकी इत्तबा नहीं की जाती, इंसान अपनी जिंदगी गुजारता रहा अपने तरीके से, तो परेशानियां आ जाती है। तो परेशानियों से निकलने के लिए भी एक ही तरीका है के नबी की इत्तबा, हर छोटे बड़े अमल में नबी की इत्तबा करो, मेरे नबी ने क्या फरमाया इस पर अमल करो। ये भी याद रखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है जिंदगी का एक एक पहलू महफूज है, और खास करके इस दुनिया में यह होता है कि बड़े से बड़े अजीम इंसान, उसकी जिंदगी का जो है हर इंसान की जिंदगी का एक दो पहलू होते हैं, एक होता है दाखिली जिंदगी, एक होता है खारजी जिंदगी, एक घरेलू जिंदगी और बाहर की जिंदगी। तो बाहर की जिंदगी जो होती है दोस्त अहबाब का होना और इंसान के बड़े उसमें काबिलियत जोहर निकलते हैं सब कुछ है, तो बड़े से बड़ा आदमी जो है उसकी बाहर की जिंदगी जो है उसको लोग तो जानते हैं, लेकिन दाखिली जिंदगी जो होती है, जो घरेलू जिंदगी होती है, जो खास जो आम लोगों की नगाहों से अवजल होती है, वो लोगों को पता नहीं होती है। और इसी वजह से तो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियत होती है, बाद में उसके घर में पता चलता है कि उस घर में जो है जो वो शख्सियत दावा करती थी उसके घर में बिल्कुल उलट चल रहा था। और तो ये होता है, लेकिन सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ

0: के वो साले साहब से मरी शाह साहब से भी पुरानी मुलाकातें रही हैं और अब तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे बेचारों को। तो बाकी ये साले साहब से जिसकी मुलाकातें हमारी ओवरसीज के हवाले से रहती हैं तो इंशाल्लाह पहली फुर्सत में उनसे मीटिंग करके मुलाकात करके इससे बातचीत करते हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला भी हमारे जो ये इशू है इसको हल करवाते हैं जल्दी इंशाल्लाह देंगे इंशाल्लाह ताला।
1: राणा साहब चौधरी शौकत साहब को ये 20-28 साल के करीब जो है ये काफली के यहाँ सदर रहे हैं।
0: ओ माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी नाइस।
1: तो राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, मुझे पता है मसरूफ है, आप भी मीटिंग में जा रहे हैं तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
0: जनाब थैंक यू वेरी मच, वेलकम जी, ऑलवेज वेलकम भाई साहब,
1: थैंक यू। तो शक्कर साहब आप हमारे साथ हैं, कमरान हैं, शाह साहब हैं, तो आज जरा फिर हम आप ही खुल के बात करते हैं, यहाँ की सियासत की बात करते हैं। जो स्वीडन में इलेक्शन आ रहे हैं आज, जाहिर है सब आपका भी बड़ा असर रसूख है स्वीडन में।
2: भाई साहब बहुत ज्यादा शोर है, पता नहीं क्या चैनल पे अभी आज जो है ना कुछ समय ज्यादा समय, हाँ अब ठीक हुआ है, अब ज्यादा बेहतर हो गया।
1: जी जी बात कर रहे हैं जो साहब।
2: हाँ अब बेहतर हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा शोर था, कुछ समय ज्यादा नहीं आ रही थी बात की, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान से ही वो जो लाइन में कुछ मेरे ख्याल इस तरह से इशू आ रहा था। तो माशाल्लाह जी कामरान भाई हम आपके लिए दुआगो हैं, जो हमारे लिए जो हमारे लायक होगा आप हुक्म करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए पूरा बाजू बन के आपकी सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह स्वीडन में आप कामयाब होंगे, आप एक अच्छे इंसान हैं और हर दोस्त दोस्तों के लिए दोस्त हैं, भाइयों के लिए भाई हैं, आप मोहब्बत करते हैं, जो भी काम हो जब भी रब्ता आपसे मैंने भी किया या जो भी साथी करते हैं तो आप कोशिश आपकी होती है कि उनके साथ अच्छे तरीके से मिलें, उनकी सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, उनके मसले का उनको हल निकाल के दें, तो ये एक अच्छी बात है, इस तरह से बंदे आने चाहिए कम्युनिटी के लिए फाइट करने वाले सियासतदान, वो जो के पार्लियामेंट में आप जैसे लोग आएंगे, कम्यूनों में आप जैसे लोग आएंगे तो हमारी कम्युनिटी के लिए फायदा होगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल बच्चों के जो है उनमें फायदा होगा, उनके मसले मसाइल हल करने के लिए ऐसे लोग जो दर्द रखते हैं कम्युनिटी का, ये माशाल्लाह हमारे लिए एक सासा है, हम आपके लिए इंशाल्लाह दुआगो हैं जो कामरान भाई। तो शाह साहब माशाल्लाह, शाह साहब आप भी खैर खरीय से जाए, आपका सफर आसान हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, आप जा रहे हैं यूलैंड में, तो भट्ट साहब को हमारी तरफ से सलाम पेश करना।
3: चौधरी शौकत साहब मैं सबका सलाम पेश करूंगा आपका भी और सबका, और मैं आप शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं आप ब्रिज पे जाने वाला हूँ और वहां पे शोर ज्यादा होगा, लिहाजा मैं आप लोगों से जुदा हो रहा हूँ। और चौधरी शौकत ने जो कुछ कहा, कामरान ने कहा, अदनान ने कहा, राणा साहब ने, हम सब बड़ी अच्छी आज की डिबेट थी। और राजा कपूर साहब आपको भी जो शील्ड मीडिया पहले भी मुबारकबाद दे चुके हैं और आप भी देते हैं, और बिल्कुल ये उम्मीद रहते हैं कि डेनमार्क के लिए जो भी पाकिस्तानी अच्छा काम करे उसको एम्बेसी शील्ड या जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे, स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहे, जो भी उसको चीज दे, हम सबको वेलकम करना चाहिए और खुशी से हर एक को वेलकम करना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक को मिल गई है तो हम उस पे उदास हो जाए, नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए कि हमारे 200 में से कोई इस बुलंदी पे पहुंचा। ठीक है राजा साहब, सबको खुदाफिज।
1: बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, बहुत शुक्रिया। कामरान आप चौधरी साहब ने आपके लिए जिक्र किया तो अब अगर आप अपने इलेक्शन की बात करें उस पर खुलकर आते हैं।
4: जी अस्सलाम वालेकुम सर, साहब बहुत शुक्रिया आपकी इतने ये इट्स अलॉट फॉर मी, और कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे भी हो डैनिश हमारे पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और कोई भी हो तो हम हाजिर हैं, क्योंकि चौधरी साहब का मेरा बड़ा एक मतलब है कम्युनिकेशन हमारी रहती है, तो बिल्कुल यही बात है, तो इंशाल्लाह बस यही रिक्वेस्ट है आपके जो सबसे, मैं डैनिश जी हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं या वो जो भी आप हैं मालमो में आप रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर, तो काइंडली सोशल डेमोक्रेट का जो 62 नंबर है वो मेरा है, तो मुझे काइंडली पर्सनल वोट आप दें ताकि मैं यहाँ पर एक इंशाल्लाह सोशल डेमोक्रेट जो बहुत बड़ी पार्टी है इस वक्त, यानी लार्जेस्ट पार्टी है स्वीडन के अंदर, लेकिन अभी तक उनकी हुकूमत नहीं है, और मेरे अदनान भाई जो हैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि इस वक्त जो स्वीडिश डेमोक्रेट है जो स्वेरी डेमोक्रेट कहते हैं वो

0: बड़ी पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, और हमारे अंदर दो तीन चीजें हैं कि हमें वोट डालना चाहिए। हमारे बहुत से जो भाई हैं मोस्टली वो वोट नहीं डालते, वो इस चीज की अहमियत नहीं समझते, जिसकी वजह से वो फिर जो एक रेसिस पार्टी है वो जीतती है और ऐसे कानून बनाती है जो हमारे अगेंस्ट हो। तो बिल्कुल हमें एक सबको एक वोट डालना चाहिए ताकि हमें जो हमारा हक है जो हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ
1: कमरान हमें ज्वाइन किया है
0: है।
1: लुबना इलाही साहबा, जो कि बहुत पुरानी सिटी काउंसलर रही हैं, बड़ी एक्टिव हैं, अपनी जिस जमात के साथ इनका तल्लक है उस जमात से बड़ी एक्टिव हैं। ये किसी ज़माने में भी जो है सोशल डेमोक्रेट पे भी इनका जो है वो तूती बोलता था, लेकिन अब अपनी ये सियासत करती हैं, अपने तरीके से सियासत करती हैं और एक्टिव रहती हैं, और जो है वो अपनी जो है एडवाइस भी देती रहती हैं। बेसिकली ये स्कूल टीचर हैं। लुबना आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ चौधरी शकोत साहब और कामरान है, इलेक्शन में कामरान जा रहा है स्वीडन में।
2: हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, और बाकी सबको भी अस्सलाम वालेकुम, और सुनने वालों को भी सलाम।
1: जी वालेकुम सलाम लुबना।
2: जी
1: मैंने
2: तो
1: छोटी सी तमीद बांधी है, हमारे साथ चौधरी शौकत साहब भी हैं और कामरान अनवर भी हैं। तो ये इलेक्शन हो रहा है सितंबर में स्वीडन मालमो में, तो यहाँ भी लोग दोनों तरफ, चूंकि यहाँ भी उनका स्वीडन में भी दोहरी शरीयत का निज़ाम है, तो यहाँ से लोग भी वोट डाल सकते हैं। तो एज ए सियासतदान आप क्या वो क्या कहती हैं, इनको क्या तजावीज़ देंगी?
2: मैं तो राय साहब आपको पता है हमेशा की तरह ये कहती हूँ कि आपसे वोट जरूर डालना है, ताकि जब आप वोट नहीं डालते तो जो वो एक बैलेंस खत्म हो जाता है। जो लोग हमारी बर्बादी चाहते हैं वो तो वोट डालते ही हैं, और हम लोग घर में भी बक बक झक झक करके गुस्से से वोट नहीं डालते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ डालें। अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि आपको बोलने का भी हक हो ना। जब आप वोट नहीं डालते तो फिर एतराज करने का भी हक नहीं। तो मेरी तो यही होगी, और कामरान कोई अननोन शख्सियत नहीं है, काफी अरसे से अपने हम वतनों के लिए स्वीडन में काम कर रहा है, और मैंने तो हमेशा इसके बारे में अच्छा ही सुना है, तो अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे।
1: तो लुबना यहाँ की भी बात कर लें, यहाँ भी बड़े काम हुए और काम होने जा रहे हैं, यहाँ भी किसी टाइम भी पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनके इलेक्शन तो अपने टाइम पर होते हैं, तो यहाँ कम्यूनों में क्या हो रहा है?
2: आपको मेरी पेशन को याद नहीं हुई आई कि मैंने कहा था ये अपना टर्नोल हुकूमत नहीं निकालेगी। अभी देखे जो पहला एतराज जो है कि जो कि जैसे रेडिकल वेंस्टर के लिए नो गो है, वो ये है कि जो शरीयत की कमेटी है, इंफ्यूजाज की कमेटी, वहां पे उन्होंने जो लोग काफी अरसे से शरीयत जिन्होंने अप्लाई की हुई थी उनको रोक दिया है, इस पर इतना बड़ा झगड़ा बना हुआ है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग अगली दफा सोच के वोट डालेंगे, क्योंकि जहां उन्होंने वोट डाला है वो अभी भूले नहीं है। तो इस चक्कर में ना रहें कि सिर्फ अपने लोगों को वोट डालना है, उस चक्कर में रहें कि जो बंदा बंदी आपके लिए काम करती है, चाहे किसी पार्टी से भी हो। तो कि जिन लोगों ने जैसे डेनमार्क की सोशल डेमोक्रेट है उसमें, और टेंस खोल के पार्टी में मेरा ख्याल है 70% फर्क है, 30% ये डिफरेंट है, अदरवाइज वो वही बातें करते हैं जो, या वही पॉलिसीज बनाना चाहते हैं जो डेनिश सोशल डेमोक्रेट है, जो कि डेंस खोल के पट्टी करती है। तो मैं तो बहुत उम्मीद करती हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ कि मिड टर्म इलेक्शन आए तो कि हमारी इस मनहूस से जान छूटे, कोई दूसरा आए जो कि हक इंसाफ की बात करें। अभी देखे कि इंगस्टॉयबिया ने एक उधर गिमनेजियम है, तो वहां पे कुछ बच्चों ने हमाकत है कि वो कहा कि लड़कियों को कहा तुम ये क्यों पहनती हो वो क्यों पहनती हो, तो ये उनका काम नहीं है, बच्चों की तरबियत के लिए उनके वालदैन हैं, और वालदैन ही को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ये कहता है कि बच्चे वालदैन की है, सिस्टम के नहीं। तो जी वो इनका था कि उस जिमनेजियम को ही बंद किया जाए ना, तो अभी वो जिमनेजियम के बाद खड़े होके ये कह रही है कि मुसलमान ऐसे हैं। तो मैंने कोपेनहेगन कमून को लिखा है कि वो कोपेनहेगन कमून की इंस्टीट्यूट है, तो इसके ऊपर कानूनी पाबंदी लगाए, या कोई भी हो कि किसी इदारे के बाहर अगर खड़ा होके कोई इस्लाम की बात नहीं कर सकता, तो ये जो बकवास कर रही है इसको क्यों इजाजत है? अब देखे क्या जवाब देती, क्योंकि ये एक इश्तियाल अमेज हरकत है। ये अपने जमाने में खान यस पसंद कर चुकी है, वो टैक्सी पकड़ के ब्लॉगर्स प्लेस पे आती थी, दुनिया जहां की ओल फोल बकती थी, जिसका नतीजा हमें बाद में भुगतना पड़ा। بچے جذباتی ہوتے ہیں, جب وہ ان کو کھڑے ہو کے باہر گالیاں دے رہی ہے, ان کے مذہب کو گالیاں دے رہی ہے, تو وہ کیوں نہ اس کا جواب دے, کوئی لاجیکل بات کرے نا. ان کا یہ جو جو کچھ بھی ریاست گمنیزیم میں ہوا ہے وہ ان کا ایک یہ کہہ سکتے اندرونی معاملہ ہے. وہاں پہ کالج کا بسٹریل سے ہوتا ہے, وہاں پہ کالج کا ڈین ہوتا ہے, انسپیکٹر ہوتا ہے, ان کو یہ حل کرنے دو. تمہارا کام نہیں, تم کمون سے کسی چیز میں جمپ لگا کے آگ لگانے کے لیے وہاں سے آؤ, اپنی جو تمہاری جگہ ہے تم اس کو سنبھالو. پھر اس نے کہا کہ جی یہ جو ڈین جاکے ہوتی ہیں جو کہ خود وہ ہر وقت پہنتی ہیں, وہ ممنوع قرار دینا چاہیے کیونکہ اس کو مسلمان پہنتے ہیں. مطلب دیکھے نا,
1: تو لبنہ اس پر جو سیاسی باقی جماعتیں جن کو غیر ملکیوں نے ووٹ دی ہیں, ایس ایف کیا کہتی ہے, ریڈیکل وینسٹا کیا کہتی ہے, انہیں سسٹم کیا کہتی ہے؟
2: رائے صاحب کچھ اتنے کم عرصے پہلے ہم تو افکورس کو کنڈم کرتے ہیں. لاسٹ لوکے نے کل جانا پیانا روی کی بات کرتے ہیں, جو غلط بات ہے, ہم اپنے معاشرے کے لیے جو اچھائی ہوگا ہم یہ کریں گے, لیکن یہ نہیں کہ خود آپ وہ جیکٹ پہنے جو بھی پہنے اور آپ حد تک آ جائیں. دیکھیں کمون کا کام ہے کہ جو ان کے کمون کے اندر معاملات ہیں وہ اس کو حل کرے. ٹھیک ہے, جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ مطلب قانون بناتے ہیں, ان کا کوئی کام نہیں.
1: کمیون میں کون کام کر رہا ہے؟
2: کمیون میں جو تو ابھی تو بےچارے جو ہوئے ہیں, میرا آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ ان سے میں پوچھوں گی یا بلاؤں گی کہ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. ابھی جو یہ حکومت بنی ہے اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں, ابھی تو اللہ اللہ کر کے واپس سارے کونسلر آئے ہیں. تو میری کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, سوائے کہ میں اپنے کمیون میں ذرا جو چھنگ پیا میں جو حالات ہیں اس کے اوپر بہت بزی ہوں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے. یعنی یہ پچھلے دنوں جو پھر سے ایک بھڑک سی آگ کچھ نوجوان,
1: آپ کی آپ کا اپنا پارٹی میں بڑا اثر رسوخ ہے, بڑے لوگ آپ سے ملتے ہیں اور بڑی جگہ تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے, تو یہ کام آپ کو کرنا چاہیے.
2: نہیں یہ میں دیکھیں میں نے الیکشن نہیں لڑا, تو میں نے وقت کے ساتھ یہ سیکھا ہے کہ پارٹی کے جو اندر سے پالیسیز بنوائی جائیں, اندر سے جو ہے یہ بات کی جائے کہ کیونکہ ساری چیزوں سے جب تک آپ پیسے نہیں ہوں گے کچھ نہیں کریں گے. تو میں جو ریڈیکل وینسٹا کا جو بیک کوپن ہے تو میں اس پہ فی الحال چھنگ پہ کام کر رہی ہوں کہ ان کو ایکسٹرا وسائل دیا جائیں کہ یہ جو کن ٹوٹے ایک دم سڈنلی دوبارہ پیدا ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے جو چھنگ تھا, تو ان کو یہیں پہ روکا جائے, تو اس کے لیے پیسے چاہیے. تو
1: لبنہ یہاں لوگ جو ہیں وہ بینر سیاسی جماعتوں کے بھی ممبر ہوتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, لیکن اپنی جو لوکل جماعتیں ہوتی ہیں پاکستان کی ان کے بھی ممبر ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہم ان کو گلا کر سکتے ہیں؟
2: رائے صاحب آپ کو میرا موقف پتا ہے کہ بجائے لوگ جو کہ ڈینش نہیں بولتے گھر میں تنہائی سے مر جائیں ڈینش ہو جائے, اچھی بات ہے کچھ سن لے سنا لیتے ہیں, مجھے اس پہ کبھی بھی اعتراض نہیں. یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے. میں کچھ ایسے گروپوں کی ممبر ہوں جو کہ امریکہ کی سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ آپ اس کو ممنوع نہیں قرار دے سکتے, اور آئی ول آلویز چوز کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں, اپنے دماغ کا استعمال کریں, اور اگر آپ غور کریں تو ان میں کوئی اتنے ینگ لوگ نہیں ہے, 50 سے اوپر سب. یہ ان کا جمہوری حق ہے, وہ کسی بھی تنظیم کے ساتھ کام کرے, ایٹ لیسٹ دے نو ہاؤ ٹو ایکسپریس. وہ ان کے خاندان ہے پاکستان میں, آپ اس کو ایسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف دہلی سیاست میں ملوث ہوں. نہیں ایسے نہیں, میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں.
1: لبنہ پچھلے دنوں آپ ایک پروگرام میں گئی ہوئی تھی تو ہمیں بھی اتفاق سے موقع ملا, تو وہ ابھی تک جو ہے وہ آپ وہاں آپ کی موجودگی کا دھواں ابھی تک اٹھ رہا ہے.
2: میری موجودگی کا میں آگ نہیں لگاتی, میں آگ بجاتی ہوں, کہاں پہ دھواں آ کے اس کی بات کر رہے ہیں.
1: صاحب آپ سن رہے ہیں؟
3: جی جی جی جی جی میں بالکل سن رہا ہوں, بالکل سن رہا ہوں.
1: آپ بھی سیاستدان ہیں, لبنہ بھی سیاستدان ہے, اور یہ ینگ عمر میں یہ سیاست میں آئی ہیں.
3: جی جی بالکل بالکل.
2: میرا ایک سال میں ایک دن اگر آپ کو پاکستان سے ذرا بھی لگاؤ محبت ہے, یو ہیو ٹو بی جسٹ اے پاکستانی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. مجھے تو جو کوئی بھی 14 اگست کو بلائے گا میں جاؤں گی اگر میرے پاس وقت ہوا تو. مجھے اس کی اتنی پرواہ کہ کیونکہ پاکستان ہوگا تو سیاسی پارٹیاں ہوں گی, اور باقی دھواں اٹھتا ہے یا آگ لگی ہے میں مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اگر کسی نے مجھے عزت پیار سے بلایا, میں میرے پاس وقت تھا اور میں گئی بھی ہوں وہاں پہ. और आइंदा भी कोई मुझे अगर बताएगा, मेरे पास वक्त हुआ 14 अगस्त के मौके पे, वहां पे मैं तस्दीक नहीं करूंगी कि मैं इस पार्टी की हूँ या मैं इस पार्टी की हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने ये तहिया करना है या ये फैसला करना है कि हमारे अंदर पाकिस्तानियत कहाँ पे है, क्या हम पाकिस्तान हैं या सिर्फ अपनी पार्टी के मेंबर हैं। तो ये मेरा रास्ता नहीं था।
1: चौधरी शौकत साहब, आप अपनी पार्टी में सियासत कर रहे हैं या आप भी एक थिंक टैंक का काम करेंगे?
3: मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप समझते हैं, आपको पता भी है, आपसे बातें भी होती रहती हैं। जैसे लुबना ने कहा, लुबना ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की, ये पुरानी सियासतदान है, पाकिस्तान के हवाले से मोहब्बत भी रखती हैं, डैनिश के जो है ना सिस्टम में पूरा पूरा इनकी नजर होती है, सियासत में भी नजर होती है। और ये जैसे कह रही है कि जो भी आदमी किसी को बुलाता है इंशाल्लाह उसमें जो है ना जाना चाहिए, सारी पार्टियां हमारी पार्टियां हैं, जो भी होगी पाकिस्तानी पार्टियां हैं, तो एक किसी न किसी हवाले से किसी न किसी के साथ ताल्लुक होता है, तो ये हमें नाराजगियां नहीं बना के बैठना चाहिए, हम सब के साथ सपोर्ट करनी चाहिए, जो बुलाता है उसकी उसके साथ जाना चाहिए।
2: 14 अगस्त
3: हो या मुझे तो कोई भी इत्राम से कोई जो पार्टी भी करता है जो बुलाता है तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। अगर 14 अगस्त हो, 14 अगस्त के अलावा भी उसके बाद भी कोई पार्टी या कोई प्रोग्राम करता है मुझे बुलाता है तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा उधर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पाकिस्तानी है, हमने बैठना है, हमने इस माशरे में रहना है, हम डेनमार्क में रहना है, हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे बैठेंगे। ये कौन सी नाराजगी है कि अगर कोई बुलाए तो आदमी कहे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलादा बात है। कोई इस तरह सा इशू ना हो तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो इज्जत देता है उसको बिल्कुल जो है ना आप माशाल्लाह अच्छा उसको उसका समझना चाहिए कि उसने आपको इज्जत दी है। और दूसरा यहाँ भी सियासत, आपको पता है राजा साहब, मेरे पार्टी के हवाले से आपको पता ही है मेरा एक ही मौकफ है, मैं चौधरी बरादरान के साथ हूँ, हमेशा उनके साथ ही रहा हूँ और उनके साथ ही रहा हूँ। मैंने हमेशा से कहा है जो उनका फैसला होता है हम उसकी कदर करते हैं, तो हम अपनी पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे, बाहर बैठ के या अंदर बैठ के, वो तो कोई बात नहीं है कि कोई ओहदा हो या ना हो या ओहदा मिले या ना मिले या ओहदा ले या ना ले, ये कोई बात नहीं है, हम एक ही पार्टी के साथ है इंशाल्लाह चौधरी बरादरान के, और उन्हीं के साथ हमेशा रहेंगे।
1: चौधरी साहब, ब्रेकिंग न्यूज देते चलें, चौधरी शाफे साहब कनाडा गए हुए हैं तो चौधरी जफर साहब भी कनाडा में है, तो क्या वापसी डेनमार्क वाया पाकिस्तान तो नहीं हो रही?
3: राय साहब मेरे ख्याल में नहीं है, वो जफर साहब से बिल्कुल उनके साथ हैं, उनके मेरी बातचीत भी होती हुई है उनसे, सब कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल में वो डेनमार्क में नहीं आएंगे, वो पाकिस्तान ही जाएंगे। तो उसके बाद हो सकता है कि जो जब भी कोई फैसला होगा तो इंशाल्लाह जरूर चौधरी बरादरान आएंगे, डेनमार्क में क्यों नहीं आएंगे, चौधरी बरादरान आएंगे, शाफे साहब आएंगे, सालक साहब आएंगे, जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम हुआ या पाकिस्तानी कम्युनिटी उनको जब भी दावत देगी तो इंशाल्लाह वो आएंगे।
1: जो साहब, चूंकि पता लगता है कि आप हर वक्त टच रहते हैं, तो कल मेरी जो आप अजहर बेग साहब भी थोड़ी देर का उनका भी प्रोग्राम होगा, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है, उन्होंने देखा लोगों के वो मसाइल सुन रहे हैं, चौधरी शाफे साहब बड़े जिसे कहते हैं गहरे दोस्तों की तरह दूसरे से गले भी मिल रहे हैं, और सीनियर जो है वो नायब सदर का उनको लेटर भी मिल गया, तो आप लोगों से मुराद है यहाँ की जो काबीना उनके लेटर भी तो आने चाहिए।
3: बिल्कुल सही बात आपने कही, मैं तो जो है ना आपको पता ही है मेरा मौकफ क्या है, तो वो तो मैं तो बार बार दोहरा नहीं सकता अपना मौकफ, तो बाकी
1: जिसके पास लेटर होगा मैं उसको मानता हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं मानता,
3: इसकी रिस्पेक्ट तो हमेशा करेंगे, हमने चौधरी बरादरान की पार्टी की रिस्पेक्ट करनी है, तो जो चौधरी बरादरान जिसको मुंतखिब करेंगे हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी सपोर्ट करें, उसको माने और उसकी रिस्पेक्ट करें। और दूसरा ये बात है कि अजहर बेग की जो बात है, माशाल्लाह अजहर बेग पाकिस्तान में गया हुआ है, वो उनके साथ बैठता है, उनके साथ मिलता है, उनके साथ क्योंकि एक तो उनके हल्के में है और दूसरा उनके साथ वो उसका तल्लक है, बिल्कुल कोई उसकी दूसरी राय नहीं हो सकती है क्योंकि मुझे पता है, और वो पार्टी के लिए ही काम करता है, और दूसरी वो जो है ना डेनमार्क के लिए, वो कह रहा था, आपको भी कह रहा था, मैंने सुना है कि वो जो को भी कोई काम हो तो मुतलका डेनमार्क का तो वो मुझे बताएं, आपको बताएं, कोई किसी और को बताएं, शाफे साहब को डायरेक्ट बताएं कि ये मामले है, तो इंशाल्लाह चौधरी बरादरान काम करेंगे। चौधरी बरादरान हमेशा से हर जो भी काम हो वो सुनते हैं, और जहां तक हो सके तो वो काम करवाते भी हैं, करते भी हैं। ये तो हमेशा से चौधरी बरादरान का जो है ना ये रहा है कि जो भी हो, ये अब तो शाफे साहब हैं, पहले उसके पहले चौधरी जो है ना वजा साहब थे, चौधरी शाफे साहब जो उसके शफा साहब थे, चौधरी शुजा साहब पहले हैं, परवेज लाई साहब हैं, हमेशा से है, जो भी है, जिधर भी इक्तदार होता था, जिधर भी जिसका को काम होता था, इंशाल्लाह हमेशा से चौधरी बरादरान ने काम किए हैं। चौधरी बरादरान ने जिसका भी कोई मसला है कोशिश की है कि वो हल करने की, वो हल भी करवाया उन्होंने लोगों के मसले मसाइल।
1: तो चौधरी साहब आखिरी सवाल आपसे करते हैं, फिर लुबना की हुकमरान से भी लेंगे, क्या लेटर मिले तो बंदा रिकनाइज होता है, या जो उदे तकसीम हो जाते हैं, मान लिए जाते हैं, उस तरह नहीं चलने चाहिए?
3: राज साहब ये तो डिपेंड करता है कि कम्युनिटी जब यहाँ एक मुंतखिब हो जाए कि इस पे एग्री हो जाए कि यार ये हमने करना है, तो वो तो पार्टी तो या कम्युनिटी के लोगों ने चलानी है। तो अगर हम सब दोस्त एक ही पार्टी पे एग्री हो जाए, एक ही बात पे एग्री हो जाए, तो क्यादत ने क्या कहना है, कि क्यादत क्या कहेगी कि नहीं नहीं ये नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए। क्यादत को तो चाहिए कि पार्टी रन करे और उनकी पार्टी या काम करे, तो जब काम करने वाले एग्री होंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मसला उस वक्त पैदा होता है कि जब अपनी अपनी बात करना शुरू कर देते हैं ना, उस वक्त मसले पैदा हो जाते हैं। तो मसले जो है ना, तो फिर वो बात होती है कि यार नहीं ये जो है ना, जो क्यादत जिसको मुंतखिब करेगी तो वो उसको जो है ना सब मान ले। लेकिन अगर काफी चीजें ऐसी भी होती हैं, आप देख लें नून के हवाले से, अभी देख लें नून में दो ग्रुप बने हुए हैं, एक को नोटिफिकेशन लादा मिला हुआ है, एक को नोटिफिकेशन लादा मिला है, तो ये दोनों अपने अपने हवाले से काम करते हैं, अपने अपने पार्टियां करते हैं, अपने अपने जो है प्रोग्राम करते हैं। तो ये भी तो है ना, अगर बात होती है ना मानने की, इत्फाक ना करने की, नहीं, अगर इत्फाक कर दिए तो बहुत अच्छी बात है।
1: थोड़ी सी दुरुस्त कर दूं, या नून को दो नोटिफिकेशन नहीं मिले, एक ही नोटिफिकेशन है उनके पास।
3: हाँ जी, तो जो देखो ना, ग्रुप तो दो बने हुए हैं ना, नोटिफिकेशन एक हो गया तो दो ग्रुप बन गए हैं, तो इनको चाहिए कि अपनी जगह पे
1: इनको दोनों चैलेंज नहीं करते।
3: हाँ यही है ना, तो लेकिन इत्तफाक की बात है ना, वो जो आपने बात की ना, मैंने भी ये किया कि कम्युनिटी पे इत्तफाक होना चाहिए ना, जब कम्युनिटी में इत्तफाक होगा, पार्टी में इत्तफाक होगा, पार्टी लोगों में इत्तफाक हो जाएगा, तो मसला क़यादत को तो कोई मसला ही नहीं होगा। क़यादत चाहेगी कि ये अच्छा एक दूसरे के साथ मिल के तो पार्टी को चलाए।
1: तो कमरान, अगर आप सुन रहे हैं तो आप वहां भी आप समझते हैं किस तरह के ग्रुपिंग है मालमों में भी?
0: नहीं जी, इस तरह की तो नहीं है, बस मैं एक चीज कहूंगा, माशाल्लाह जो मैं मतलब है जो अलुमना इलाही है, मैं तो इनको सही इतना एक्सपीरियंस है इन्हें इलेक्शन का, कम्युनिटी अपनी सोसाइटी का, डेनिश मतलब है उसकी कैंडिडेट रह चुकी हैं, तो मुझे जब भी मैं इनसे बात करता हूँ, मुझे बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं, एक्सप्लेन करती हैं मुझे ये सोसाइटी के बारे में मसले होते हैं। तो एज ए ये मेरी एज ए मेंटर जो एक उस्ताद कह सकते हैं, वो मैं इनको मतलब है इस जब मैं टॉक करता हूँ तो मुझे एक्सप्लेन भी करती हैं कि आपने कैसे करना है, किस तरह आपने आगे मतलब रहनुमाई करते हैं। और जो शोकर साहब है मतलब है ये इनकी बहुत ये मतलब है, जब भी मैंने इनसे कोई बात हुई है, मुझे डेनमार्क में कोई भी एक हेल्प आई है, जैसी आई है, इन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के मेरी हेल्प की है कि कोई भी मसला हो। हाँ जी बिल्कुल, यानी एज ए मैं तो इनको अंकल भी कहूंगा, और मैं एज ए बहुत अच्छे मेरे अजीज भी हैं। तो मैं बस यही मैं करूंगा अपनी बात की, बस दोबारा रिपीट करूंगा, इसके बाद में वक्त नहीं लूंगा, कि काइंडली सबको आप कहें कि वोट डालें 26 अगस्त से लेकर 13 सितंबर के दौरान, यहाँ पर ये जो डेज हैं आप जाएं अपने घर से जाएं और वहां जाके आप अपना वोट को कास्ट करें, ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई भी किस्म की आपको है मसला है तो आप मुझे मतलब है किसी से भी आप पूछें, कामरान अनवर जो सोशल डेमोक्रेट कैंडिडेट है सिटी काउंसिलर का, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, प्लीज वोट डालें। जी रासा
1: लुबना, आपने बात सुनी, हम क्लोज करने जा रहे हैं, आप क्या कहेंगी आखिर में?
2: राजा साहब, मैं तो वही कहूंगी जो पिछले कई सालों से कहती आ रही हूँ कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए माशरे की सियासत, क्योंकि उसकी जो भी काबीना बनेगी, जो भी हुकूमत बनेगी, उन्होंने आपके पेंशन के फैसले करने, उन्होंने फैसले करने, तो आप दरअसल अपने साथ वोट ना डालते कि आप इन्फ्लुएंस नहीं चाहते, तो फिर आप रोते क्यों है कि सोशल कम कर दी, पेंशन कम कर दी। तो ये कहीं ना आप अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती करते हैं। आप अपना इन्फ्लुएंस डरा सकते हैं, मादरी जबान है, टैक्सीज है, पेंशन है, बीमारी के पैसे, हाउस अजीब सा कानून बनाए, अगर बच्चा कोई वो जराइम में शादी में शामिल हो जाता है तो माँ बाप को घर छोड़ना पड़ता है। यानी कहाँ का, वैसे कहते हैं कि 18 साल बाद जो नहीं है आपका, मतलब वो शख्स जो वो आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। तो इतने इश्यूज हैं, इतने इश्यूज हैं, तो आप अपने लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वीडन में है, डेनमार्क में, आप जरूर वोट डालें।
1: लुबना आपका बहुत शुक्रिया, कामरान आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी शौकत साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम ग्रुपों की बात करते हैं तो इसमें जो है आप भी काफी अपना जो है रोल अदा कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल राय साहब इंशाल्लाह, मैंने तो हमेशा इत्तेफाक की बात की है। आपको पता है मैंने 20-25 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ काफ लीग का, और लुबना इसकी गवाह है, लुबना को भी पता है मैंने कभी मुखालफत की सियासत नहीं की, मैंने हमेशा से रिस्पेक्ट देने की और रिस्पेक्ट लेने की सियासत की है हमेशा से। और मैं इतने अरसे से किसी के साथ मेरा इस तरह का कोई खिलाफ नहीं पैदा हुआ, ना ही पार्टी में, पार्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थी, और इंशाल्लाह आइंदा भी इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करते रहेंगे पार्टी के लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी इंशाल्लाह।
1: सबका जी बहुत शुक्रिया, आप सबने अपना कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, छुट्टी का दिन है, आपने टाइम निकाला है, इंशाल्लाह सबसे राबता रहेगा
3: जी।
1: समझ नाजरीन, आपने सबकी बात सुनी और ये लाइव प्रोग्राम था, हर आदमी को हक है अपनी बात करने का, कोई भी बात करना चाहता है उसके लिए अगर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, घर में बैठकर बात करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता, बंद कमरों में किसी ने बात करनी है तो उसके लिए हमारा टाइम हाजिर है।
4: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: दिक्कत आ रहा था, अब तो जगह जगह के ऊपर हमारे हाथ में, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं टेलीविजन हाथ में पकड़ कर आपसे बात, तो मैंने बैठकर देखकर काम करते हुए जब देखा तो जनाबे वाली इनके टेबल के ऊपर एक कप भी पड़ा हुआ था। मेरा मुशाहिदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो अंदर से काला बाहर से सफेद था। काफी पीते थे, लिखते थे, काटते थे फिर लिखते थे। तो खबर बनाने का ढंग जो है तो नसर मलिक ने मेरी उर्दू चेक करनी थी। इन्होंने 22 सुफात लिखाए, शायद मुझे शक पड़ रहा है कि आप भी साथ थे शायद। 22 सुफात ये बोलते गए, मैं लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा, तो फिर इन्हें यकीन आ गया कि मैं उर्दू में मुश्किल से मुश्किल अल्फाज भी लिख सकता हूं। मेरे इस हवाले से नसर मलिक उस्ताद हैं और ये पाकिस्तान में सहाफी थे। जब यहाँ वली खान आए को हनूर खाने पीने की, तो वहां पर नसर मलिक की मुलाकात, और मैं भी था और भी लोग थे, अयूब काकड़ भी थे, तो उन्होंने वली
1: हाजी साहब जरा मैं दुरुस्त कर दूं, वो कोहनूर में नहीं आए थे, वो शेख साहब जो नदीम का रेस्टोरेंट था उसमें आए थे।
0: कोहे वहां भी थे, कोहनूर में भी आए थे, ये मैं आपको सच कह रहा हूँ,
1: क्योंकि आपके पास नॉलेज ज्यादा है,
0: क्योंकि वो वहां भी आए थे। और ये शायद आपके आने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास उनके इंटरव्यू की कॉपी थी जो इन्होंने दिखाई उनको, और उन्होंने कहा कि वाकई मैंने आपको पाकिस्तान में इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उनको तो अयूब काकर साहब ने वो अपनी।
1: चलिए आई साहब, चूंकि आप तजुर्बाकार हैं माशाल्लाह, आपके पास बड़ा नॉलेज है, आपके पास पूरी वो कहते हैं बक्से भरे हुए हैं, जो सबूतों के बक्से भरे हुए हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता आई साहब।
0: और इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी नसर मलिक ने, बाकायदा रिकॉर्डिंग की, और मैंने वो खबर जो है खुद अपने तौर पर, क्योंकि मेरा उस्ताद है खबर बनाना लिखना, उसका बैलेंस करना।
1: नहीं ऐसा, उस्ताद का इतराम करना चाहिए, यही हमें सिखाया गया है।
0: तो वही तहफ्फुज़ात हो सकते हैं अपने अपने, और एक बात वो ये भी कहते हैं तुम्हारा दीन तुम्हें कबूल, मेरा दीन मुझे कबूल। मैं भी उन्हें कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये कोई ऐसी नाराजगी की बात नहीं है। मेरे बच्चे यहाँ पर डैनशों से तालीम नहीं लेते, आपके बच्चे नहीं लेते, औरों के बच्चे नहीं लेते, उनका दीन उनको कबूल, मेरा दीन मुझे कबूल। क्या मेरे बच्चे जिन्होंने मास्टर किया है, जिन्होंने अच्छी नौकरियां ली हैं, जिन्होंने इंपीरियल सेना में मुझे दावत मिली थी कि मियाँ माँ बाप तुम्हारे आ सकते हैं जब तुम्हें हम सनद देंगे, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने सनद दी है मेरी बेटी को, मैं जब वहां पे गया तो उनको पढ़ाने वाले जो हैं वो लाला मूसा के प्रोफेसर नहीं थे, डेनमार्क के प्रोफेसर थे। तो कहने का मकसद है कि नसर मलिक मेरा उस्ताद है खबर बनाने का ढंग, बल्कि मैं यहां तक कहूंगा ये दावा है नसर मलिक का, यहाँ जितने माहनामे रसाले निकले हैं ना, उनको भी कुछ ना कुछ, मैं लफ्ज कह रहा हूं कुछ ना कुछ, सबको नसर मलिक ने सिखाया कि मैगजीन बनाया जाता कैसे है। वो तो वीजा लेकर आए थे यहाँ, जर्नलिस्ट बन के आए थे, वो किसी का बेटा नहीं बन के आए थे। सदाए पाकिस्तान की कापी असलम महर के पास आज भी मौजूद है सदाए पाकिस्तान की। तो मैं कह रहा हूं कि वो इसमें कोई शक नहीं, वो
1: हाजी साहब जो भी अल्लाह ताला ने जिसको भी इलम दिया है उसकी तारीफ करनी चाहिए, और आप भोगों से काम लेते, हम भी भोगों से काम लेते, जिस तरह आपने कहा है वो अपने तौर पर, आप अपने तौर पर बड़ी अच्छी तरीके से आप वजाहत कर दिया है, और इसी तरह अगर देखिए मालमों में हाजी साहब इलेक्शन हो रहे हैं, आपका बड़ा असर रसूख है वहां पर भी, मालमों में भी, क्योंकि मालमों के पास भी दोहरी शरीयत है, पाकिस्तानियों के पास जो है ना वो भी वोट दे सकते हैं, यहाँ भी रहते हैं, मालमों में भी रहते हैं। तो हाजी साहब दूसरी ये बात है कि एक बड़ी दिलचस्प बात है कि हम कहते हैं तो हम तो इस मुल्क में रहते हैं, स्वीडन या स्कैंडिनेविया के जो ममालिक हैं वहाँ तो सारे इस मुल्क में रहते हैं, इस कानून कायदे के अंदर रहते हैं, कोई सुन्नी है, कोई वाबी है, कोई शिया है, कोई मरजई है, तो इसमें हाजी साहब यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है इस तरह का।
0: नहीं देखें, इन्होंने दो मस्जिदें बाकायदा

0: زمین سے اٹھا کر اہل توشیق کے لیے آر نوائے میرے برو نصر اپنے ناصر فوڈ سٹور کے پاس سے گلی جاتی ہے, کیا وہ مسجد بلٹ کر کے نئی بنا کر کنسٹرکشن کمپنی نے نہیں دیا آپ کو اہل توشیق کو؟ اور این وی میں قطر نے 120 ملین ڈینش کراؤن, میرا خیال ہے اب صحیح پتہ نہیں, 120 ملین جو ہے انہوں نے قطر نے خرچ کر کے آپ کو بہترین مسجد این وی میں این وی نہرے بروس میں بنا کے نہیں دی. مالموں کے اندر بھی میں وہاں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں, وہاں جناب روزن گارڈ میں پتہ نہیں کتنے ملین کرون لے کر انہوں نے زمین کا قطع خریدا اور اس کے اوپر سویڈس کمپنی نے بنانے والے انسٹرکشن جو ہیں کنسٹرکشن فرم اتنی پیاری مسجد بنائی ہے کہ جب دور بیٹھا کوئی عالم خطاب کر رہا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے کان میں جو ہے نا وہ ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور میں سن رہا ہوں. اتنی پیاری مسجد, وہاں سینکڑوں میرا خیال ہے 1000 آدمی آسانی سے, تو یہ انہوں نے سہولت دی ہے مجھے جو میں اپنی زندگی.
1: حاجی صاحب یہ دیکھیں نا, وہاں جو ہے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہے, وہ بہت بھی بڑی خوبصورت ہے. حاجی صاحب یہاں قانون کا احترام کیا جاتا ہے,
0: قانون کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے آپ اگر موٹر وے سے آ رہے ہیں وہاں پر تو ہر دفعہ جب میں گاڑی پہ جاتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے داماد کے ساتھ تو وہ جو ہے بالکل موٹر وے کے پاس نیچے کھلے بڑی کھلی جگہ زمین جیسے فٹ بال کی ہوتی ہے تو ترکوں نے بنائی ہوئی ہے, ترکیوں نے بنائی ہوئی ہے مسجد, اور کار پارکنگ کی سہولت ہے بے تحاشا. بس میں نے ایک چیز نوٹ کری ہے کہ آپ اپنی عبادت کریں, آپ تشدد نہ کریں, آپ یہاں پر کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ کریں, کسی کو دھمکی نہ دیں, اور اپنے گھر بلا کر دھوکے سے دعوت میں بلا کر اس کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نہ دیں. اگر ایسا کام کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے اور آپ کے پاس ثبوت ہے تو سیدھے قانون نے پکڑ کر کان سے جیل میں ٹھونس دینا ہے آپ.
1: حاجی صاحب اب قانون جو ہے بہت تبدیل ہو چکے ہیں, ہم سب کو قانون کا احترام کرنا چاہیے, جو بھی ہم یہاں رہتے ہیں یہاں کی ڈینس سیاسی جماعتوں کا حصہ بننا چاہیے اور یہاں کے قانون کا احترام کرنا چاہیے. کوئی بھی عالم دین ہمیں نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ یہاں کے قانون کا احترام نہ کریں, وہ بھی فرماتے ہیں سارے عالم دین کہ یہاں رہتے ہیں یہاں قانون کا احترام کریں, دینی لحاظ سے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا احترام کریں.
0: اس کی مثال ایسے ہے کہ زاہد خان ہے اپنے کوئٹے یا پشاور کے, ان کے والد ڈاکٹر عبد العزیز یہاں 40 سال پہلے آئے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں جو کوئی بات سیکھی ہے تو ان لوگوں کی محفل صحبت میں بیٹھ کر سیکھی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آگ کا کوئی انگارہ ہے بھٹی ہے اس کے قریب آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آگ اگر آپ کو جلاتی نہیں نا تو اس کے انگارے جو ہیں وہ باریک باریک اڑ کر آپ کی قمیض میں چھید کر دیں گے. اگر آپ عطر والی دکان کے پاس بیٹھے ہیں نہ بھی خریدیں عطر لیکن آپ کو اس دکان کے دروازے یا کھڑکی سے خوشبو ملے گی. میں ڈاکٹر عبد العزیز یہاں 40 سال پہلے تھے, زاہد خان ہے ان کا نام.
1: حاجی صاحب آپ تیسرا لفظ بھی کہتے ہوتے, آپ گندگی میں بیٹھیں گے تو گندگی آپ پر پڑے گی.
0: تو وہی تو نا وہ مثال وہ آگ والی دی ہے نا کہ آگ جو ہے وہ سوراخ کر دے گی قمیض آپ کے اندر. تو یہ چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں اور ہو جائیں گی, اب نئی نسل تیسری چوتھی جوان ہو چکی ہے. آپ بعض اوقات کہتے ہیں نا وضاحت سن لو کہ جی نوجوان باہر نہیں نکلتے, ڈیموسٹریشن نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے. آپ نے یہاں پر روڈ کے اوپر لڑائیاں نہیں کی, بتائیں مجھے, انہوں نے دیکھی نہیں, پڑھی نہیں, سنی نہیں, اخبارات میں, ریڈیو.
1: تو حاجی صاحب قانون بن گئے نا, دیکھیں بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں, بچے سب کے برابر ہوتے ہیں.
0: آپ کے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بابے جو ہیں لڑائیاں لے کر آیا یہاں پاکستان میں, آئے مزدوری کرنے سے, آئے مزدوری کرنے سے. اور میں اکثر آج بھی میری بات ہوئی ہے کسی سے, مجھے اب یاد نہیں آ رہا, میں نے انہیں کہا ہے کہ اگر یار میں پاکستان میں ہوتا تو میں اپنے بچوں کو ان کالجوں ان یونیورسٹیوں میں ان اعلیٰ تعلیمی اداروں میں میں تعلیم نہیں دلوا سکتا تھا جہاں جن کا معیار ہارورڈ یونیورسٹی کی طرح ہے. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरह है। हमारे बच्चों को डेनमार्क ने मुफ्त तालीम दी और जेब में करोड़ डालने हैं कि जाओ जाकर बर्गर भी खाओ, बर्बल भी खाओ, शफाफ पानी भी पियो। तालीम भी दी है, फर्नीचर भी दिया है। मेरे पास एक तस्वीर है गिलगित के अंदर, मेरी छोटी छोटी मासूम बच्चियां बर्फ के मैदान के ऊपर बैठी हुई इम्तिहान दे रही हैं। मैं तस्वीर दिखा सकता हूं क्योंकि मुझे मेरा शौक ये है कि या तो मैं किचन में अपनी मर्जी की सब्जी फ्रूट जो भी बनानी है क्या खाना है, और दूसरा मैं कीड़ा हूँ, कीड़ा मुझे आप हैं हूं तो मैं इंसान अल्लाह का बनाया हुआ बंदा हूँ, लेकिन मैं मुताले के लिहाज से मैं कीड़ा हूँ पढ़ने के लिए। मेरे पास बच्चियों की तस्वीर है गिलगित।
1: जी साहब, आप तालीम की कदर करते हैं। देखे ना, जस्टिस रिटायर्ड रमदे साहब वो भी एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जंगल में। वो कहते हैं एक पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी, जब वो मुकम्मल हो जाएगी, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, जिन बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं वही बच्चे जो है अब यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। वक्त आएगा, हमारी जिंदगी में आएगा, या वो कोशिश तो कर रहे हैं।
0: आएगा, जरूर आएगा। मैं वही कह रहा हूँ, बर्फ है बिछी हुई सफेद चादर और बच्चियां सादे कपड़ों में बैठ कर अपना इम्तिहान दे रही है, और वो वहां पर क्यों नहीं स्कूल।
1: हाँ जी साहब, आप देखे ना, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज है, तालीम आपकी सारी आपको मुफ्त है, अस्पताल में आपको सारी सहूलतें मिलती हैं, जो बादशाह को भी मिलती हैं वो आप मजदूर को भी मिलती हैं। तो हाजी साहब, इन चीज़ों की हमें कदर करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हम जिन जिन ममालिक से हैं वहाँ जाकर ये बातें करनी चाहिए। वहाँ जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ की अच्छी बातें यहाँ भी करनी चाहिए।
0: राजा साहब, उसकी मिसाल ऐसे है, आप कितनी बातें दूं, कितने बताऊं। मुझे ये 30 साल पहले जो घर मिला ना, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड। तो मैंने अपने बच्चे को कहा, बेटा ये बोर्ड किस लिए लगा हुआ है? कहने लगे, ये बोर्ड लिखा हुआ है कि 8 बजे के बाद यहाँ आप फुटबॉल का जो ठप्पा है नीचे फेंक कर उसका शोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे लोग जो है वो आराम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, प्रोग्राम देख रहे होते हैं, या किसी किताब में मशगूल होते हैं। तो बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर, मुझे ये 35 साल हो गए इस घर के अंदर, इस जगह। जो लोग अपने मुल्क की नस्ल को साइंसदान राकेट पर बिठा कर चांद पे भेजना चाहते हैं, वो अपने मुल्क की नर्सरी को इब्तदा से, शुरू से, बार नहर से ऐसी तरबियत देते हैं। आप सुबह निकले इशारे के पास, टीचर उनका 5 साल के बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, 8-10 बच्चे हैं, तो वो कहता है कि ये लाल रोशनी आपके दिमाग के अंदर ऐसे बैठ जाए कि जैसे कंप्यूटर में बैठती है। आपने नहीं जाना, जब ग्रीन होगी, सबज होगी, तो फिर चलना है आपने। वो 4-5 दफा ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड। मैं खड़ा होके देखता हूँ, मेरे पास तस्वीरें भी बनी हुई हैं, कि उनको वो उनके दिमाग के अंदर हिफज करा देते हैं कि सुरख बत्ती क्रॉस नहीं करनी। तो हम क्या करते हैं, लाल बत्ती से जिग जैग बनाकर गाड़ी निकाल लेते हैं, मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं। कितने नौजवान मर गए हैं एक्सीडेंट के अंदर, कितने ही नौजवान। ये आदतें शुरू से बच्चों के अंदर दिमाग में डाल दी जाए ना, तो बिल्कुल बच्चे जो हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। मैं केला खाकर ना छिलका, मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की इसलिए नहीं कि कोई नाराज हो जाएगा, मैं छिलका सड़क पर फेंक देता हूँ, बूढ़ा आदमी ताके फिसले और गिरे और मैं हंसूं और उसकी वीडियो बनाऊं। पाकिस्तान में ऐसा ही तो होता है। मैंने देखा एक बच्चा 5 साल का चिंगम मुंह से निकाल कर, तो वो डस्टबिन ढूंढ रहा था, डस्टबिन ढूंढ रहा था कि मैंने ये चिंगम चबा दी है, अब इसको मैंने सड़क पे नहीं फेंकना, मैंने डस्टबिन में फेंकना है। ये मुल्कों की तरक्की का राज, अपने बच्चे को बार नहर से साइंसदान बनाने के लिए और चांद पर जाकर दूरबीन लगाने के लिए तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी ने प्लेन पकड़ना है, एम्बुलेंस आ रही है, और जनाब 20 गाड़ियां दाएं, 20 बाएं, 20 आगे, 20 पीछे, पूरी सड़क खाली उसके लिए करा लेते हैं कि भी वो जो है जा रहा है गवर्नर हाउस, अपने दफ्तर जा रहा है। तो फिर तरक्की कैसे होगी? यहाँ हमें सीखना चाहिए। मुझे जब लोग मिलते हैं ना, बाद आदमी कहते हैं कि यार अगर 56 ईयर हैज बीन स्पेंड हेयर, यहाँ आपने गुजारे हैं 56 साल, तो आपने अभी भी कुछ नहीं सीखा। यार पैसा दौलत भी कमाओ, काम भी करो, आलीशान मकान भी बनाओ, प्लाजे भी बनाओ। 320 के उसके नसर मलक की रेडियो की खबर मेरे पास है, दुकानें हैं, बिजनेस है, कारोबार है, रोटी कमा रहे हैं, अच्छी बात है। कोई नसर मलक ने रेडियो पर यह खबर नशर की थी 320 हमारे बंदों की है, लेकिन इसके साथ साथ अपने बच्चों को तालीम भी दें, उनको भी साइंसदान बनाएं। एक लड़का आया अभी, मेरी बात हुई ग्रोसरी की दुकान पे, उसने किसी एजेंट से नहीं कहा, उसने अपनी सीवी लगाई तो उसको माल्टा में, राजा गफूर साहब, माल्टा ने इंटरनेट के ऊपर चेक किया, उन्होंने कहा इतनी तालीम इसके पास है, इतना इसका दिमाग ब्रेन है, ये पाकिस्तानी बच्चा है। उन्होंने उससे रابطہ कायम किया और कहा कि इसी वक्त इस्लामाबाद जाओ और वीजा लो। हम उसको उनको कह रहे हैं कि हम स्पॉन्सर हैं इस लड़के के, हमने इसको पाकिस्तान से अपने मुल्क में लाना है। वो गया, उन्होंने कहा तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारे आप पूरी तालीम ये पढ़ी है, हम आपको वीजा देते हैं। टिकट भेजा, वो आ गया। अब जब आ गया यहाँ पर, उसकी 1,00,000 नौकरी है, मानेंगे आप? मकान उससे पहले उसकी बीवी बच्चों के लिए दिया हुआ था, बनाया हुआ था, मेरी मुलाकात हुई है चंद दिन पहले।
1: तो हाजी साहब, तो इल्म की कदर की जाती है ना, हर दौर में इल्म की कदर हुई है।
0: इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर करते रहेंगे, बस एक ही गुजारिश है। सिकंदर मलक कहता है कि मैं आजिज रहकर यहाँ तक आया हूँ, अपने बच्चों को आजिज़ी सिखाएं, किसी का गिरेबान ना पकड़े, किसी को डराए ना, धमकाए ना, और दावत देकर घर बुलाकर उसको माँ तेरी, भैन तेरी, और तेरी
1: और भी मुतालबा कर रहे हैं कि सफीरे मोहतरम की 2 साल नौकरी बढ़ाई जाए, ये आपको ख्याल कैसे आया?
0: ये जनाब सबसे पहले आइडिया और ख्याल और इस तरफ तवज्जो जो मबजूल कराई है, ये जनाब राशिद अली साहब ने जो बहुत बेहतरीन जबरदस्त, उन्होंने जो हमारी पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त की है कोलंबिया रेस्टोरेंट में, उन्होंने ये ऐलान किया सबसे पहले, और अच्छी बात हम हर जगह से लेते हैं। वो उन्होंने कहा है जी कि मेरी तंजीम, मेरे दोस्त, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मैं उन्हें भी कहूँ कि ये मौजूदा सफीर, अभी यार देखें मैं कौन हूँ, मैंने तो यहाँ के फर्श साफ किए, जर्मनी में मैंने 2 महीने प्लेटें साफ की। तो मुझे अम्बेसडर साहब कह रहे थे कि असलम यार तू आके साथ ना, कभी चाय भी नहीं पीता है, मैं मुझे चाय की दावत दे रहे थे, ये जो अभी 2026-14 अगस्त को, तो मैं साइकिल पे जाऊंगा, मैंने कहा मैं थक जाऊंगा, बच्चों के पास तमाम सबके पास गाड़ियां, ऐसा आदमी आज तक यहाँ नहीं आया अम्बेसडर, मैं आपको बताऊं। लेकिन मुखालफत फरिश्तों के भी हम करने वाले हैं, मुखालफत करनी है ना तो उसकी कमजोरी एक पकड़ लेंगे, कोई पकड़ेंगे, यार बंदे हमसे गलतियां होती हैं, आदम की औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई थी जन्नत में, कहा था उस दरख्त से नहीं खाना, तो उनको इसलिए जमीन पर अल्लाह ने उतारा। हमारा अव्वल वालद कुरान कहता है कि तुम्हारी तमाम इंसानियत का अव्वल बाप आदम अलैहिस्सलाम है, वहां से अल्लाह ने एक आदमी।
1: बहुत शुक्रिया आई साहब, आपने बड़ी कीमती मालूमात दी है, अब हमें टाइम में इजाजत नहीं दे रहा, अगले मेहमान जो हमारे पास आ चुके हैं इंशाल्लाह। आज साहब
0: आखिरी 2 मिनट चले जी, वो भी आप
1: चले, आज साहब आप कह लें क्लोज कर लें।
0: नहीं बस मैं यही बात करनी है कि अपने बच्चों को जिसने तालीम दे दी ना, दौलत चोरी हो सकती है, दौलत पकड़ी जा सकती है, दौलत बरामद की जा सकती है, कहीं भी छुपाई हो, तालीम चोरी नहीं हो सकती। अल्लाह हाफिज।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे हाजी असलम मेहर साहब जो कि आपको कीमती मालूमात दे रहे थे, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बयान कर रहे थे। सामान हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, तो उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सामईन नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन नाज़रीन, जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फ़जाओं से मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब जनाब अज़हर बेग साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बेग साहब, आपको कोपेनहेगन की फ़जाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: ये बड़ी मेहरबानी राय साहब, मेरी तरफ से सब डेनमार्क के रहने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपको भी।
1: वालेकुम सलाम। बेग साहब, आपकी मसरूफियात हमें मीडिया के जरिए तो पता चलती रहती हैं, तो आज कल क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आपकी क्या मसरूफियात हैं?
2: देखिए जी, आजकल पंजाब के अंदर जो भी काम वगैरह, जो भी शाफे साहब ने जितने स्पेशली गुजरात के अंदर काम कराया, दूसरे जिलों में भी, पूरे पंजाब में वो वर्क कर रहे हैं। इतने बिजी होते हैं कि मुझे भी उनसे मिलने के लिए या दूसरे कुलीग को भी टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि वो काफी मीटिंग एवरी डे, वो जब भी सुबह से लेकर रात तक, फिर घर में बैठ के भी वो लोगों को टाइम देते हैं, मुस्लिम लीग हाउस में भी टाइम देते हैं। तो सब लोग मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। मसले मसाइल तो बहुत ज्यादा है लोगों के, और महंगाई का भी दौर है, तो ऊपर से ये बारिशों का मौसम है गुजरात में, स्पेशली वो सैलाब वगैरह का सिलसिला चल रहा है, उसमें भी ये दौरे वगैरह करते हैं, और जो हो सकता है इनको लोगों की मदद मदाद भी करते हैं, तो अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से भी, दो मिनिस्ट्री है उनके हवाले से भी काम करते हैं। वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी वो सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। मरकज में सालक साहब है, पंजाब में शाफे साहब है, और हम लोग इनके साथ है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। तो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। इधर की पॉलिटिक्स, इधर की सियासत और उधर की सियासत जरा और तरीके की है, इधर जरा और तरीके की है, तो अच्छा है, वो सीख रहे हैं, तो अपने क़यादत से सीखते रहेंगे इंशाल्लाह, जो वो बोलेंगे उनके मुताबिक काम करेंगे जी।
1: बेग साहब, आपकी मीटिंगें होती रहती हैं, ज़ाहिर पार्टी की मीटिंगें चलती रहती हैं, जो अखबारात में भी मैं पढ़ता रहता हूँ कि और आजकल हर रोज आपकी कोई ना कोई मीटिंग होती है, तो यहाँ डेनमार्क में भी माशाल्लाह 14 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया गया, पाकिस्तान अम्बेसी की बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी, और वहाँ बहुत सारी चीज़ों को इस दफ़ा शील्ड भी दी गई, 17 इम्तियाज भी जो है वो कोपेनहेगन के शहरियों के हिस्से में है, आप भी कोपेनहेगन के शहरी, आप क्या कहेंगे?
2: जी, मेरी तरफ से तो मलक साहब को भी मुबारक हो, वो डेनमार्क में रहने वाले पाकिस्तानी एक बंदे को गवर्नमेंट पाकिस्तान वो अगर इस नवाज रही है तो मैं खुशी होनी चाहिए, वो इस काबिल है। स्पेशली आपको भी उन्होंने शील्ड दी है, आपको भी मुबारक हो,
1: शुक्रिया,
2: आगे भी आपको तरक्की दे, और ऐसे ही चलते रहे हम सब मिलजुल के, तो खुशी होती है जब अपना, मेरा मुल्क तो डेनमार्क भी है, मेरे सारा आप लोग सारे बहन भाई हैं उधर हैं, तो आप लोगों का नाम लेता हूँ, बात बात पे कहता हूँ कि हम डेनमार्क के लिए कुछ करें, स्कैंडिनेविया के लिए कुछ करें, उधर के ओवरसीज़ों के लिए कुछ करें, वो कहते हैं इंशाल्लाह टाइम देंगे, करेंगे और हम सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, तो मेरी तो यही कोशिश है कि सब लोग अच्छे तरीके से, हम पाकिस्तान भी जब आए तो अच्छी आसानियां पैदा हो हमारे लोगों के लिए, स्पेशली एयरपोर्ट पे, और स्पेशली जो थाना कचहरी का कल्चर है इसमें आसानियां पैदा हो, जो लोगों के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो लोग सलूक करते हैं, मैंने खुद भी देखा है और लोगों से भी सुना है जी, बहुत ज्यादती करते हैं, तो इस पे वो मोहसिन नकवी साहब से भी वो कहते थे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो वजीरे दाखला है, उनके अंडर है इंतजामिया सारी पूरे पाकिस्तान की, अच्छा होगा, राम राम से होगा इंशाल्लाह। अभी 2-2.5 साल है तो चौधरी से बवाल लगे हुए हैं, दोनों भाई सारे मिलजुल के कर रहे हैं, और पंजाब में स्पेशली इंशाल्लाह इनका काम नजर आ रहा है, गुजरात में तो नजर आया सबको, सड़कें बन गई हैं, सारा काम कंप्लीट हो
1: गया। ये बेग साहब, ये जो पानी नजर आता है, ये पानी इतना ज्यादा कहाँ से आ जाता है? हम भी रहे पाकिस्तान में, कभी इतना सड़कों पे पानी नजर नहीं आता, या ये भी कोई एक आई मूवी बनती है जिसमें इतना बड़ा सैलाब दिखाया जाता है गलियों में?
2: नहीं नहीं, ये नेचुरल है, इसलिए कि ये बारिश का जो पानी था वो तो शाफे साहब ने क्लियर कर दिया। पहले 10-10 दिन वो पानी नीचे नहीं जाता था, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लियर है, पीछे रह जाता है। ये जो पानी आता है, ये सैलाब का पानी कह ले, हमारे से कोई 15-20 किलोमीटर दूर है, मल्लू खोखर उसको कहते हैं, गाँव है, सड़क है, उधर से वो जो सैलाब आता है ना पानी, वो बन जो होता है वो तोड़ देते हैं लोग, वो शहर की तरफ पानी कर देते हैं। तो वो पानी जब शहर में आता है तो वो सैलाब की तरफ, लोगों के घरों में, सड़कों में वो पानी आके खड़ा हो जाता है, फिर गाड़ियां लगती हैं, फिर वो टाइम तो लगता है। पहले लोगों ने बोरियां गटरों में बोरियां डाल दी थी ना, जो इनको इनके साथ जो भी बातें लोग करते थे अपोजिशन वाले, आपको भी पता है मुखालफत जब होती है तो ऐसे प्रोग्राम वो लोगों ने बंदे छोड़े होते हैं जो इनके खिलाफ काम करते हैं, ऐसे घटिया काम है ये, जो लोगों को तकलीफ देते हैं, बंदों को नुकसान करते हैं घरों का।
1: पेक साहब, आपने ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिया कि लोग गटरों में बोरियां दे देते हैं अपनी मुखालफत में, ये तो कम्युनिटी को नुकसान होता है।
2: ये तो सबको पता है कि ऐसे ही करते हैं, ये जलालत करते रहे हैं, अब नहीं होगी, अब तो बहुत, ये मरियम नवाज ने भी इस पे एक्शन लिया है, गटर सिस्टम है, गटरों के ढक्कन ले जाते हैं, और जो पुल के ऊपर वो जंगला वगैरह लोहे का होता है वो काट के ले जाते हैं, बंदे भी ने अपने आप को दुरुस्त करते हैं। ठीक है
1: बेग साहब, आपको मौका मिलता रहता है लीडरान से मिलने का, तो चौधरी शाफे और जो दोनों भाई जो हैं वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं, हमारे ओवरसीज के जो वजीर हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप सब, आपका मिलना जुलना रहता है, तो आप खुद ओवरसीज के मसाइल सबसे बेहतर कौन जानता आपके?
2: जी जी, तो जो हमारी मीटिंग हो रही है ना वो सालक साहब के साथ होगी, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, तो उसमें शाफे साहब का, मेरी कोशिश है स्कैंडिनेविया में, स्पेशली डेनमार्क में वो आए और आएंगे इंशाल्लाह, और पहला इंटरव्यू भी आपके साथ करेंगे आने से पहले भी, और मंगल वाले दिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में आम लीडर्स ब्रांड से आपका बात भी मैं कराऊंगा और मीटिंग भी दिखाऊंगा लाइव, और जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो मेरी कोशिश होगी कि मेरे कोपनहेगन के लोग देखे, मुझे ना देखे, इनके काम देखे, चौधरी शाफे साहब के काम देखे, सालक साहब के काम देखे, और ये कर रहे हैं इंशाल्लाह और आगे भी करेंगे, और जो भी मसले मसाइल है डेनमार्क के अंदर लोगों को, जो भी किसी फैमिली को कुछ जमीन का है या कोई वैसे, ये पर्चे वगैरह जाली लोग करा देते आजकल तंग करने के लिए, या और भी कोई मसले मसाइल है तो वो मुझे बताए, आपको बता दे, किसी और को बता दे, वो इन तक पहुंच जाएंगे और ये एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, लेते हैं नोटिस लेते हैं। मैंने ये शाफे में देखा है, सालक साहब में देखा है कि ये नोटिस लेते हैं, ये झूठ के खिलाफ बोलते हैं, बात सच्ची हो और ये उस बंदे के साथ खड़े हो जाते हैं। बकाया हमारी आपस की लड़ाइयों में छोटी मोटी, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मेरे लिए सारे काबिले इज्जत है जो उधर बैठे हैं, मैं आप लोगों में से हूँ, मैं उधर ही आना है। ये आनी जानी चीजें होती हैं, ये सीटें, ये उद्दे, ये कोई मायने नहीं रखते, इंसान का खलाक प्यार और असद जायलस मुनाफत जो है ये अच्छी बात नहीं।
1: बेग साहब, हमने देखा आपका ऑफिस बड़ा खूबसूरत है, लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, पीछे बड़ी खूबसूरत आपने तस्वीर भी लगाई हुई है अलामा इकबाल साहब की, बाकी कायदे आजम की तस्वीर भी हमने देखी है, लोग साहिल आपकी, आपके पास आते हैं तो जहर है आप एक पोस्ट पे बैठे हुए आम बंदे तो नहीं आप रह गए पंजाब में, अगर सीनियर नायब सदर है तो कोई छोटी पोस्ट तो नहीं है ये?
2: देखिए जी, ये जो मेरे सुनने वाले हैं ये भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये पंजाब कितना बड़ा, 13 करोड़ आबादी का पंजाब है, और किधर सिंध के पास से शुरू होता है वो उधर जाता है पिशावर तक, पिशावर से आगे जाता है, तो लोग आते हैं इनके पास, بہت بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ، چارے صوبوں میں اس کی نمائندگی ہے، آپ چیک کرا لیں۔ اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو پنجاب کے رہنے والے ہیں، اور پراپر ہم ٹائم دیتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل سنتے ہیں، اور ہم نے اپنے قائدین کو بتاتے ہیں جی یہ ملتان سے آئے ہیں۔ 14 اگست کو یہ سارا پنجاب کے لوگ، لیڈیز اور جینٹس سب آئے ہوئے تھے، اور شافی صاحب نے سارا دن، میں ساتھ تھا، انہوں نے ٹائم دیا، تمام چینل والے ادھر تھے، ARY جیو، OT2، یہ جتنے رنگ ٹی وی دنیا سارے تھے ادھر۔ اچھا ٹائم گزرا ہے، سب خوش تھے، اور اسپیشلی انہوں نے بولا تھا کہ جو اوور سیر ہے ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بتائیں ہم انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یورپ کے لوگ ہیں، وہ سعودی عرب کے ہوں گے، دبئی کے، کویت کے، جدھر قطر کے، وہ کہتے ہیں ہم کام کریں گے، تو وہ کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی کام ہو، آپ لوگ، آپ بھی شافی صاحب کے ساتھ ٹائم لے کے آپ ان کا، میں کوشش کروں گا کہ مہینے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ سنڈے کو وہ 10 منٹ یا 5 منٹ یا 20 منٹ وہ دیں گے، یہ وعدہ ہے میرا، میں کرواؤں گا، انٹرویو کرواؤں گا ان کا۔ میں نے ان کو پہلے بھی بولا تھا جب کوپن ہیگن میں تھا، تو میں نے بولا شافی صاحب ان کو ٹائم دے، رہا صاحب کو ٹائم دے، میڈیا کو ٹائم دے، لوگ ان کو سب سنتے ہیں، تمام پاکستانی ان کو سنتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے آپ کے، میں دوں گا ٹائم، تو انشاءاللہ میں، آپ خود بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، اور کوپن ہیگن کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، پہلے ڈبل نیشنلٹی کا تھا، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، یاد ہے بہت سال سب نے سگنیچر کر کے دیے، اور ہم امبیسی میں جاتے تھے، پیچھے بھی چور شرابہ ڈالتے تھے کہ سب کو مل رہی ہے، ڈینمارک کو بھی دے، تو اللہ نے کیا تو وہ مل گئی۔ اب پی آئی اے کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی اللہ کرے، سب میرے سے سمجھدار بیٹھے ہیں ادھر، ان کے بہت اچھے ہیں، سارا سلوک تعلق ہے پیچھے، تو میں اس لیے خاموش بھی رہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں۔
1: نہیں بیگ صاحب، چونکہ آپ وہاں موجود ہیں، آپ پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں، تو آپ کی بات چیت چلتی رہتی ہے، تو لیڈران کو بولے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں پی اے کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، پرافٹیبل جو ہے وہ یہ اسٹیشن ہے، یہاں سے بہت زیادہ پرافٹ ہوتا ہے، زر مبادلہ جاتا ہے۔ تو بیگ صاحب انشاءاللہ یہ پروگرام لائیو کریں گے، اور شافی صاحب سے وہ ساری چیزیں جو ہیں کھل کر بھی ڈسکس کریں گے، آپ بھی ڈسکس کریں، چونکہ آپ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔
2: جی میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈینمارک کے اندر رہنے والا کوئی بھی اوور سیر ہے، وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ گجرات کا بندہ ہے جی، یہ میرے حلقے کا بندہ ہے تو یہ میرے ساتھ بات کر سکتا ہے، نہیں، جو بھی گجرات پنجاب کا رہنے والا بندہ ہے، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہے، جو بھی کسی کو میرے ساتھ کام ہے، میں انشاءاللہ اس کا کام کروں گا، یہ شافی صاحب کہتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ روٹین کے مطابق ہر بندہ جو چاہے ان کے ساتھ بات کرے، جو بھی مسئلہ مسائلہ بتائے ان کو، اور جو بھی شکوا گلا شکایت پارٹی کے ساتھ ہے، قائدین کے ساتھ ہے، چاہے میرے ساتھ ہے، وہ شافی صاحب کو ڈائریکٹ بولے، یہ بات ہے جی، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، وہ پارٹی لیول کی بات ہو، چاہے ویسے کسی کو، کسی پولیس والے سے، کسی مجسٹریٹ سے، کسی تحصیلدار سے، کسی پٹواری سے کوئی شکوا شکایت ہے تو وہ شکایت درج کرتا ہے، تو وہ سیل تو مریم نواز کا بنا ہوا ہے، مگر وہ سیل ان کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، ان کی بھی شکایت وہ جاتی ہے فوری طور پہ، تو جو بھی کسی کا کام ہے وہ بتائیں ان کو۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ ہمارے شہر کے ہیں، وہ چوہی شجاع صاحب کے بیٹے ہیں، اور اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔
1: بیگ صاحب آپ کا قیمتی ٹائم ہے، آخری سوال آپ سے کرتے ہیں، یہ جو بلدیات کا بن گئی ہیں، یونین کونسلیں بن گئی ہیں، کوئی ادھر کوئی رائٹ کوئی لیفٹ یا آگے پیچھے ہو گیا سارا سسٹم، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
2: نہیں نہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کا فتح ہوگی، اور یہ ضلع گجرات نہیں ہے، دوسرے ضلعوں میں بھی انشاءاللہ سیٹیں لیں گے اس دفعہ، اور ہمارے چیئرمین بنیں گے انشاءاللہ، میئر بنیں گے، ہماری کوشش ہے، ہماری قیادت نے کام کیا ہے، 26 ارب روپیہ ادھر لگایا ہے انہوں نے گجرات کے اندر، یہ تو لوگ خوش ہیں، آپ آ کے وزٹ کریں، لوگ خوش ہیں، ان کے اوپر اسپتالوں کی کنڈیشن جو ہے وہ بہتر کی ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں، ہر ویکینڈ کو ادھر آتے ہیں، 2 دن ادھر دیتے ہیں، स्पेशली टीमें लगाई हुई हैं, इधर उनके नुमाइंदे हैं तो वो भी काम करते हैं, दयानतदार है सेक्रेटरी उनके, बहुत अच्छे लोग हैं। आप किसी से चेक करवा लें कि गुजरात के अंदर शाफे साहब, सालक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंतजामिया तावन करती है, बहुत ज्यादा तावन करती है, किसी को कोई शिकवा गिला नहीं है कि इनके साथी कोई ये करके वो करके, नहीं नहीं बहुत अमन है गुजरात के अंदर माशाल्लाह। और ऐसे ही अफजाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, जो भी डिवीजन के अंदर जितने जिले आते हैं, इंशाल्लाह इनमें हम फतेह हमारी होगी, हमने काम किया, काम नजर आ रहे हैं। और हम भी उधर बैठते हैं दफ्तर में, लोग आते हैं तमाम से, पंजाब से, जिलों से, और बहुत अच्छी रिजल्ट आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है।
1: बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब को सलाम दीजिएगा, जो आपका मीडिया सेल है और राजा साहब है उनको सलाम दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा।
2: थैंक यू सर, तमाम सुनने वालों को शुक्रिया। अल्लाह
1: सामान नाज़रीन, ये थे मिर्ज़ा अज़हर बेग साहब जो कि पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से बात कर रहे थे, और सारी बातें आपने ख़ुद सुन ली। तो जब आपने ख़ुद सुन ली, आपको सबको उन्होंने कहा कि आप ख़ुद डायरेक्ट भी फ़ोन किया करें, डायरेक्ट उनसे बात किया करें, कोई शिकायत हो तो आप ख़ुद बता दिया करें। और हमारा भी जिक्र कर रहे थे, हमें भी बता दिया कि सामान हम तो कम्युनिटी के मसाइल जहाँ जहाँ होते हैं उठाने की कोशिश करते हैं, हम कोई अकले कुल नहीं है, ना ही हम कोई पुलिस मैन है जो हम को जो है डंडे के ज़ोर पर काम करते हैं। हमारा काम है अपने सामान, जो हमारे सामान है उनको इन्फॉर्मेशन देना, यही हमारा काम है। इंशाल्लाह हम अपना काम करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: पाकिस्तान पाकिस्तान सामान नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर हाजिर है। मिले जुले पैगाम आ रहे हैं, अपने अपने तरीके सब जो है वो बात कर रहे हैं। छुट्टी का दिन है, धूप निकली हुई है, हवाएं भी चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चेयरमैन मोहतरम जनाब मास्टर याकूब साहब, जो कि हमारे फोरम का साथी भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मां साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं और कामयाब प्रोग्राम पर भी आपको मुबारकबाद देते हैं।
2: बहुत शुक्रिया, मैंने आपको फोन किया है कि मैं आपको भी मुबारकबाद दूँ कि कल हम जुमे को हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। आपकी तमाम मेहनतें जो हैं उनको कबूल किया गया है, आपकी जो कोशिश है उसको कबूल किया गया है, और एम्बेसडर साहब ने आपको जो मेडल दिया है उस पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। राज साहब, आपने बहुत कोशिश की है कम्युनिटी के लिए, आपने बहुत कुछ सिखाया है, आप 50 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते जा रहे हैं, आपने एक जिंदगी का हिस्सा जो है इसमें डाल दिया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम हक बजाना है कि आपको शील्ड मिली है, और एम्बेसडर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आपको शील्ड दी है। ऐसा यही है आबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, तो आपने बहुत खिदमत की है, आप बहुत मदद कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप बच्चों की तालीम तरबियत कर रहे हैं, आप बल्कि बड़ों की तालीम तरबियत कर रहे हैं। आपका रेडियो जो है ये स्कूलिंग है हमारे लिए, ये थॉट ऑफ स्कूलिंग है, हम बहुत सीखते हैं इससे, हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें खबरें मिलती हैं, हमें हमें तुलासे कुरान पाक मिलती है, कुरान पाक का तर्जमा मिलता है, हमें नाते मिलती हैं, हमें क्या नहीं मिलता, हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन जो जो कदर है वो कदरदानी करता है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा आपने अम्बेसी पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो तनकीद को तस्लीम करते हैं। आज अम्बेसी साहब ने आपकी तनकीद को तस्लीम किया है कि तनकीद आपकी वाजिब थी और उन्होंने आपको शील्ड दी है योम आजादी के मौके पर। तो राय साहब बहुत बड़ा काम है, मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी के लिए भी ये तोहफा है, मेरे लिए भी तोहफा है, क्योंकि मैं आपके कम्युनिटी फोरम का मेंबर हूँ, तो बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको और काम करने की तौफीक दे। ऐसा अगर इंसान ना जाने तो खुदा जरूर जानता है, नेकी को अगर इंसान नहीं जानता तो खुदा जरूर जानता है, और खुदा ही अल्लाह ताला ही लोगों के दिलों में डाल देता है कि ये काम करो और वो काम हो जाता है इंशाल्लाह। आपकी जो खिदमत है ये खामोश खिदमत है और नेचर इसको जानती है, अल्लाह उसका रसूल जानते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है कि किसको तबलीग करना, अच्छे काम तबलीग करना, तो आप तो यहाँ पर डेनिश सोसाइटी जो है उसके बारे में तबलीग करते हैं, आप तो पाकिस्तान सोसाइटी के बारे में तबलीग करते हैं, आप तो इस्लाम के बारे में तबलीग करते हैं, लेकिन सिर्फ जाने आए लोग जाते हैं, जिन लोग नहीं माना उन्होंने पैगम्बरों को नहीं माना, उन्होंने नबी को नहीं माना, लेकिन आपका काम है काम करते जाना, इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलेगी और हम आपके साथ

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समान, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा था कि ये हमारे प्रोग्राम जो होते हैं इंफॉर्मेशन के होते हैं, ये ना किसी के हक में होते हैं ना किसी के मुखालफत में होते हैं, ये टोटली इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम होता है। चूँकि हम लोग लोकल हैं, लोकल रहते हैं, लोकल हमारी बातचीत होती है कि हमारी लोकल जो है कम्युनिटी क्या कर रही है। और समान, आपको पता है कि ये जो सितंबर का महीना और आ रहा है, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम बनाए थे और इस पर खुलकर बात भी की थी। तो अब सितंबर जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है और स्वीडन में जो हमारे एक पुल क्रॉस करते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, चूँकि वहाँ भी दोहरी शरीयत का निज़ाम है तो वोट का हक भी लोगों के पास होता है। तो इस वक्त तजिया नगार शायद नसीम जो है हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, इनसे जानने की ये सारी बातें कोशिश करेंगे। शायद एक बार फिर आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुशामद कहते हैं।
2: जी राजा साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो मैं आपको आपके शील्ड की, आपके मेडल की मुबारक दे दूं। मैं कुछ दिन पहले मैंने देखा था आप नसीम में मौजूद थे, तो सफारत सफीर मोहतरम सफीर ने आपको एक मेडल या एक शील्ड पेश की, तो उसके लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। आज ही बात हुई है, आज ही आपने मुझे लिया, तो आज मैंने आपको मुबारकबाद दे दी है।
1: शायद आपका बहुत शुक्रिया। शायद आप जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, और आप मीडिया पे नजर भी रखते हैं, और हमारे सबसे पुराने लिसनरों में भी आपका शुमार होता है।
2: जी जी, मैं आपका ये आप गालिबन बहुत पीछे चले गए हैं, 26 साल, आज 2026 है, 2020 में चले जाएं। उस वक्त मैं एक टीन एज ही था, एक बच्चा था छोटा सा, तो उसमें आपका रेडियो सुना करते थे। उसमें मैं वीकेंड में पार्ट टाइम संडे को मेरे ख्याल अपने वालद की टैक्सी भी कभी कभी चलाता था, उसमें आपका रेडियो पहली दफा सुना था। तो उसमें फिर कभी जब आप, क्योंकि उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी, तो फिर जब पहली दफा ये चीज मैंने देखी इधर कोपनहेगन में, तो उसको देख के बड़ी खुशी हुई। तो मैं तब हैरान भी हुआ कि रेडियो पाकिस्तानी रेडियो जो है कोपनहेगन की फजाओं में घूम रहा है, ये क्या है। बहरहाल पता लगा, जो बड़े मेरे से बड़े थे, जो बुजुर्ग, उन्होंने बताया वाकई ये कोई पाकिस्तानी है, गालिबन उनका राजा गफूर नाम है। तो फिर उसके बाद मुलाकात भी हुई एक निजी महफिलों में आपके साथ, आपके बच्चे भी, आप भी, तो वो फिर पता लगा कि ये
1: नहीं, आप याद होगा, आप कई दफा जब आए तो खुशी से एक दफा आपकी बात मैं आज जरा कोट कर दूं, लोगों को बता दूं, बाद ऐसी बातें होती हैं। और मैं और मुबशर प्रोग्राम कर रहे थे तो आप आए, आपने घंटी दी, तो आपने कहा आए तो आपके हाथ में एक गालिबन पिज्जा था ना, तो कहते हैं कि आप थक गए होंगे प्रोग्राम करके, चले बैठ के चाय भी पीते हैं, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, ये मैं कार्ड पे लाना चाहता हूँ।
2: जी बिल्कुल, ये बात याद आई है, ये बहुत बहुत बहुत महल बहुत काफी पुरानी बात है, और ये उस टाइम
1: बहुत पुरानी बात
2: है, लेकिन पुरानी है लेकिन यादें रह जाती हैं। और ये वाकई ऐसे हुआ था, और मलिक मुबशर एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, एक मुखलस इंसान है, वो मुझे याद है। और वो कैसी है ये चीजें जो कि यादें रह जाती हैं आदमी की, इंसान की, इंसान चले जाता है इस दुनिया से लेकिन फिर यादें रह जाती हैं। और फिर क्या कहते हैं उसको, उस टाइम के जमाने मेरे हिसाब से उस टाइम के जमाने ज्यादा अच्छे थे आज की बनिस्बत। अगर मैं आज देखूं तो देखें हम बहरहाल इसके ऊपर मैं क्या डिस्कस करूं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं।
1: आजकल जो है ना, ज्यादा वो जिस तरह नहीं होता कोला जलता है, हालांकि कोला बड़ी अच्छी चीज है, फायदे वाली चीज है, आप उस पर ग्रिल करते हैं, लेकिन आखिर में जब जो बंदा कोले से जलता है उसको पॉजिटिव लें तो वो जलने वाली चीज बड़ी अच्छी होती है, उस पर आप जो है ग्रिल करते हैं, कुकिंग करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ जलना चाहते हैं तो फिर बंदा कोला आपको पता राख ही हो जाता है।
2: जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, कोले ने तो राख ही होता है आखिर में, तो उसको फिर आप दोबारा तो नहीं वापस लेके आ सकते जब कोला राख हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: शायद आते हैं इलेक्शन की तरफ, आप सितंबर में इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें पाकिस्तानी निसाद भी हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगा क्या लेटेस्ट पोजीशन है इस वक्त।
2: जी राजा साहब, आपने मुझे इस वक्त फोन किया है, मैं इस टाइम अपने ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं हूँ, जो उसके अंदर मेरी जो है ना हास कर, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल दूंगा कि उसमें मेरी सारी डिटेल मेरे सामने पड़ी होती है सारी, हास कर, क्योंकि हर चीजें, बहुत सी चीजें बंदा इंसान भूल जाता है ताकि गलत ना हो जाए। तो मैं इसलिए अपने सामीन और आपने ये लेना है इस टाइम कोई क्या कहते हैं मशवरा या कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसमें यह है कि कोई कोताही अगर कोई गलती हो जाए तो मैं उसकी माजरा चाहता हूँ। स्वीडन में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 13 सितंबर को है, जिसमें बड़े इलेक्शन है, अपने रीजन के भी हैं, कमून के भी हैं और पार्लियामेंट के भी हैं। तो मैं स्टॉकहोम की पहले बात करूंगा। स्टॉकहोम से गालिबन 5 से 6, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ डिटेल में कि मैं अपने घर ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ ना, मैं अपने घर में मौजूद हूँ, तो मैं बाहर हूँ। तो मैंने आपकी कॉल उठाई, आपकी आपकी जो गुजारिश थी, गुजारिश किया थी, आपका हुक्म था, तो मैंने कहा चलो मैं उठा लेता हूँ, और क्योंकि आपकी कॉल आई है। तो मैं दरअसल कल चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं, आज। तो उसमें ये है कि स्टॉकहोम से जो है ना तकरीबन 5 से 6 पाकिस्तानी खड़े हो रहे हैं, दो या दो जो पाकिस्तानी हैं वो उसमें दो दो दो खवातीन हैं। ये एक का नाम सारा सारा नहीं सारा कुका नाम है, और एक का नाम जकिया बीबी। ये दो हैं, और एक बुजुर्ग हैं गालिबन 80 के करीब, वो भी रीजन से भी और कमाउन से भी और पार्लियामेंट से भी खड़े हो रहे हैं। बाकी एक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई खटाना साहब है, वो कमाउन से, और दो और जो हैं पाकिस्तानी वो भी वो कमाउन से खड़े हो रहे हैं। और ये जो लेडी है सारा कुका, ये खड़ी हो रही है स्टॉकहोम के साथ, एक शहर है जैसे कोपेनहेगन के साथ ग्लोस्टोप होता है, या क्यों कह लें, या कोई ऐसे क्लासक से वगैरह वगैरह, तो वो एक उसके लिए मेयर के लिए खड़ी हो रही हैं। और उनके जो चांस हैं जो हैं मेयर के लिए, वो सुनने में आ रहा है कि 90%, 85-90% के करीब है वो मेयर के लिए खड़ी हो रही हैं सारा कुका। और बाकी जो जकिया बीबी हैं वो, ये मैं स्टॉकहोम की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो जकिया बीबी हैं वो काउंसिल के लिए, वो एक पार्टी का नाम है मिलियो मिलियोपैथी, जैसे एनवायरमेंट जैसे कहते हैं इंग्लिश में, तो उसकी उस तरह की एक पार्टी है। और बाकी जो दो दोस्त हैं वो सोशल डेमोक्रेट में हैं, और वो काउंसिल के लिए हैं। तो इसकी मजीद डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा, अगर मैं अपने ऑफिस में हुआ तो इंशाल्लाह ताला के नामों के साथ पूरी, कि क्या है और किधर किधर से और क्या है। ये तो हो गया स्टॉकहोम से। मेरे शहर यानी कि मालमो से, उधर जो है गालिबन 5 से 6 हैं, जिसमें से दो जो पाकिस्तानी हैं, तीन जो चार हैं वो पाकिस्तानी जो है, वो 3 से 4 जो है, मुझे अगर मुझे गलत नहीं हो तो वो कदियानी जो उनका जो जो फिरका है उस तरफ से खड़े हो रहे हैं वो इधर मालमा में। स्टॉकहोम में ऐसे कोई नहीं है। तो वो और जो दो पाकिस्तानी हैं जो जो अपना जो पाकिस्तानी है, जिसे हम क्या कहते हैं रियल पाकिस्तानी ये कह लें, वो खड़े हो रहे हैं, जिसमें एक जो है वो है अपना कामरान अनवर साहब, और दूसरे अमजद खान साहब। और अमजद खान साहब भी एक बुजुर्ग से मिल रहे हैं, बुजुर्ग से मुराद के 70 के करीब उनकी एज है। और कामरान जो है वो आपको पता ही है, वो एक यूथ
1: नौजवान
2: में
1: है।
2: ही आता है, नौजवान में कह लें, नौजवान में आता है। और ये दो जो लोग हैं इनकी कैंपेन जो है जारी है, और मैं कभी देखता हूँ कभी नहीं देखता। तो अभी जो है इसकी जो शिद्दत है, मैं सुनने में आया, मैं आज 20-21 है गालिबन, अगर डेट मुझे गलत नहीं हो तो मेरे ख्याल है बीस
1: आज
2: इक्कीस
1: बाईस है,
2: बाईस
1: बाईस है
2: हाँ
1: आज।
2: बाईस मेरे ख्याल है गालिबन नेक्स्ट वीक तक इनकी कैंपेन में वो शिद्दत आ जाएगी। तो शिद्दत से मुराद के फिर ये उसको बढ़ चढ़ के जो ना कैंपेन को करेंगे, मेरा यो ख्याल है जो मुझे सुनने में आया। तो और ऐसा होना भी चाहिए।
1: तो
2: तो
1: क्या
2: जो
1: ये
2: जो
1: बरादरी कौन सी, देखें ये सारे बेसिकली सारे स्वीडन हैं, चूंकि जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इस पे कोई जात पात वाला तो मसला ही नहीं होता, किस ग्रुप से है किस ग्रुप से नहीं है। तो लेकिन ये जो क्या कादियानी बरादरी इतनी है जो इतने 3 मैंडेट उनके जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं?
2: देखें जी, कादियानी जो जो जो कहते हैं बरादरी की आप बात कर रहे हैं, वो उनका एक ये यानी कि वो एक मुनज्जम लोग हैं, मैंने जो देखा है। वो गोथेबर्ग में भी हैं बहुत ज्यादा, यानी कि स्टॉकहोम से ज्यादा वो यूथेबर्ग, यानी कि हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं गोथेबर्ग, एक शहर है जो स्वीडन का दूसरा बड़ा शहर है, और तीसरा बड़ा शहर जो है वो मालमो है। गोथेबर्ग में वो काफी तादाद में, मैं उसका भी पता कर रहा हूँ कि वहां पर कितने हैं पक्षनी है, मेरे मुझे कल तक पता लग जाएगा, तो मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा ताकि गलत ना हो जाए। तो उधर से मुझे लगता है कि उधर से भी काफी होंगे, या अपनी जो قدیانی برادری ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک منظم وہ لوگ ہیں اور وہ تعلقات کی بیس پر, میرے ایک سننے میں ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا یار سر, وہ تعلقات کی بیس پر ایک جگہ کوئی لکھ رہا تھا پاکستانی جو اپنے جو ہم کر رہے ہیں الیکشن کمپین, اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ جگہ تعلقات کی بیس پر ہم نے اس کو ووٹ دینے ہیں. تعلقات کی بیس پر نہیں ہوتے ووٹ, یہ کارکردگی اور آپ کی جو آپ منشور جو دے رہے ہیں لوگوں کو اس کے اوپر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. یہاں پر تعلقات کی بیس پر پاکستان میں کیا جاتا ہے لیکن میرے خیال ادھر بھی اب ختم ہونا چاہیے. تو یہ اس ملک ان ملکوں میں آ کے جب آپ رہ رہے ہیں 10-15-20 سالوں سے, کوئی رہ رہا ہے 10-15, کوئی شادی کر کے آیا, کوئی دماد آیا, زیادہ تر یہی ہے نا. میں میری جیسے تو کوئی کم ہے جو اس وقت یہاں پر سویڈن میں ہیں, تو جو شروع سے یہاں پر رہ رہے ہیں جن کے والدین 60 سال پہلے آئے تھے یا 50 سال پہلے, تو آپ جب آئے ہیں تو آپ 10-15-20 سال یار بہت ہوتا ہے ان ملکوں سے سیکھنے کے لیے. جمہوریت کا سیاست بھی ایک, سیاست تو حرام نہیں ہے, سیاست بھی ایک بڑا اچھا بڑی چیز ہے, لیکن ایک منصف سیاست, ایک کہتے ہیں کہ اپنے دل کے ساتھ ایک لیگل لپٹی, منافقت کے بغیر, جھوٹ مکاری کے بغیر بھی آپ سیاست کر سکتے ہیں. سیاست تو کسی نے روکا آپ سے, سیاست بڑی اچھی چیز ہے کہ سیاست سے آپ جس چیز اپنے ملک کے لیے سیاست کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے مفاد کے لیے, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. میں ڈینش کی بھی مثال دوں گا آپ کو, سویڈن کی بھی, جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے یہ سیاست کرتے ہیں. ہاں ان میں بھی بڑی چیزیں ہیں, کمزوریاں ہیں, لیکن یہ میں پھر ادھر آ جاتا ہوں کہ میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یار یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جی آپ تعلقات کی بنا پر ایک دوسرے کو ووٹ دیں, اور یار یہ میں پڑھا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو آپ نے بات کی قدیانیوں کی. دوسرا میرے خیال آپ کا غالباً سوال ہوگا یہ اپنے جو پکشنی ہیں جو ہیں, تو اس میں یہ کہہ لیں جسے کہتے ہیں سنی پکشنی جلے کہہ لیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہ لوگ منظم طریقے سے کریں اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں الیکشن کمپین, اس طرح نہ کریں کہ جیسے انہوں نے کہتے ہیں کوپن ہیگن میں کیا. جو بات غلط ہے اس کو تو ماننا چاہیے نا. اگر کوپن ہیگن میں 5 لوگ دوست ہمارے الیکشن ہار گئے ہیں, بہت بڑی بات ہے یہ, تو اس کے بجائے کہ اگر یہ میں بات کروں غصہ کرنے کے, اس کی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے, جیسے یہ لوگ ڈینش لوگ کرتے ہیں, سویڈش لوگ کرتے ہیں, بڑی خوشی سے سنتے ہیں, کہتے ہیں ہم ہارے ہیں اور ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں, لیکن ہمارے یہ لوگ بہت کم اس یہاں کہ بھی جو تیسری چوتھی جنریشن ہے, پھر چوتھی جنریشن تیسری بھی اور چوتھی بھی کافی کافی بہتر آ رہی ہے اور آئے گی, جو آگے آ رہی ہے چوتھی تو شروع ہو گئی ہے, اور میرے خیال اگلے 10-12 سالوں تک وہ کافی بہتر ہوگی, اور وہ اس کو جیسے یہ لوگ کرتے ہیں اسی طرح کریں گے. برملا بالکل, وہ اگر کوئی چیز غلط کی ہے انہوں نے اس کا برملا وہ جو ہے نا میڈیا پہ آ کر پریس کانفرنس بھی کریں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں, تاکہ آپ کے ووٹر نیکسٹ ٹائم آپ سے بیزار نہ ہو اور آپ کو ووٹ دیں. اور سویڈن کا بھی یہی ہے, اگر یہ اپنے اس کمپین میں بالکل یورپ کی طرح جس ملک میں یہ رہ رہے ہیں یا ادھر کی جو پولیٹکس یہ کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اپنی کمپین کریں گے, تو آپ کے الیکشن جیتنے میں کافی چانس ہو جائیں گے کہ آپ کو ووٹ دیں گے لوگ, آپ کو سنیں گے. لیکن پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ لوگوں کو بتا کیا رہے ہیں, کہ آپ اس میں جو چیز آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں عمل درآمد کرا سکیں گے, کیونکہ آپ وہی چیزیں بتائیں نا جس میں آپ عمل درآمد کرا سکتے ہیں, کیونکہ 3-4 سال تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں سیاست سے. جیسے کہ ڈنمارک میں بہت سے لوگ آؤٹ ہوئے ہیں, پاکستانیوں کے علاوہ عربی آؤٹ ہوئے ہیں, ترکی کردش آؤٹ ہوئے ہیں, سیاست سے بالکل ہی ختم کر دیا لوگوں نے. اس کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ آپ جھوٹ ایک دفعہ بول لیں گے, دو دفعہ بول لیں گے, تیسرے دفعہ لوگ آپ کا فارغ کر دیں گے. تو آپ وہ چیز کریں جو پارٹی سے آپ بات کر کے جس پارٹی کے ٹکٹ لیا آپ نے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, یہ آپ اپنے ووٹر کو بتائیں, نہیں کر سکتے وہ نہ بتائیں. اور ووٹر آپ سے سوال کرے گا تو آپ اس کو صاف بتائیں کہ اس کا میں کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا.
1: بڑی دلچسپ بات بتائی ہے, ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں, اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں, آپ نے بڑی یہ میں سمجھوں کہ بڑی خبر ہے اور آپ نے یہ بریکنگ نیوز آج دے دی ہے کہ یہاں جو ہے وہ اپنا سنی قادیانی الیکشن ہو رہے ہیں. ووٹ تو سنی کا بھی برابر ہے, قادیانی کا بھی برابر ہے, شیعہ برادری کا بھی برابر ہے, یہاں تو ووٹ سب برابر ہے.
2: میں نے آپ نے یہ کہا تھا کہ دوسرا یعنی میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستانی ہیں,
1: آپ نے انفارمیشن کی حد تک بات کر رہے ہیں نا,
2: انفارمیشن کی حد تک بات کر رہا ہوں. میں نے یہ بتایا تھا کہ
1: متفق ہونا ضروری نہیں ہے,
2: نہیں ہے, میں یہ بات کر رہا تھا کہ एक जो जो कहते पाकिस्तानियों का वो जो भी है उनका फिरका उसको छोड़ें, वो मुनज्जम है, मुनज्जम होके और उनके चांस ज्यादा है इलेक्शन जीतने में। उनके पार्टी जो जिस पार्टी से वो खड़े हैं वो तीन है या चार है या दो, मालूमों की बात कर रहा हूँ, मुझे ये शक है कि वो उन वो सीटें निकालेंगे, क्योंकि वो मुनज्जम होकर काम करते हैं, वो ये एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते। पाकिस्तानी है वो भी, जारी बात हमारी तरह उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हमारी ममालिक से उनका ताल्लुक है, तो ये तो फिर पाकिस्तानी हुए ना। तो अगर वो कर सकते हैं तो इधर क्यों नहीं आप मुनज्जम होकर कर सकते, अपनी कंपेन चला सकते हैं या अपना अपनी सियासत कर सकते हैं, इधर क्यों आप की जो है एक बात क्या कहते हैं मुंह के ऊपर और होती है, पीठ पीछे और होती है, दरमियान में और होती है, तो इधर तो फिर आप जो है ना फिर मुनज्जम ना होए। मैं इसकी मिसाल मेरा अपना मुल्क जो है डेनमार्क, उसकी बार बार दे रहा हूँ। क्यों देता हूँ बार बार, कि उसमें पांच लोगों का हारना बड़े इलेक्शन में बहुत बड़ी यार बात है, छोटी बात नहीं है। जो जो मुल्क ये सुनता है ना यूरोप के, उधर भी पक्ष नहीं है, वो हैरान रह जाते हैं, किसी को पता भी नहीं है, किसी को पता लगता है, कहते हैं ऐसे हुआ है, मैंने कहा जी ऐसे हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी उसका जाला नहीं अभी तक किया कि क्या हुआ है, उसकी अभी शर्म नहीं आई, या मुझे तो आ गई है कि शर्म आ जाए कि यार ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसे क्या किया आपने। आप इधर की सियासत कर रहे हैं, इधर की सियासत में आप इधर ही की सियासत के लोगों से मिलें, इधर की ही कंपेन चलाएं और इधर ही की मशहूरी करें, इधर ही की पार्टी की। जो ही आप किसी के पीछे लग के दूसरी दूसरे मुल्क की सियासत को करेंगे आप अपनी कंपेन में शामिल, लोग देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, वोटर आपको देख रहा है, तीसरी जनरेशन चल रही है वो आपको देख रहा है। अब ये दूसरी पहली जनरेशन नहीं है जिसमें आप ओए छड़ो यार कोई नहीं गल, ओए पुत्र वोट पा दे, अब ऐसे नहीं है। मेरे घर के अंदर मैं अपनी बात करता हूँ, अभी 13 को जाना है ना, मैंने किसी पार्टी को डालना है, मेरे बच्चों ने किसी पार्टी को, मेरी बीवी ने किसी पार्टी को डालना है, और मैंने बात भी की कि कहते पापा तू खा एक तू तू खा एक फसल लॉस वो उसके बीच टाइम सो खत्म बात हो गई।
1: बिल्कुल, क्योंकि जमहूरी मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी तरीके से आप बात करें, चूंकि इसको आप एनालाइज कर रहे हैं, आप तजिया कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, टैक्सी ब्रांच का भी आपको बहुत तजुर्बा है, इसको हर चीज़ को आप समझते हैं, जानते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आई चली गईं ख़त्म हो गई, और अब जो है वो एक नई कंपनी जो आई है उस पर भी जो है उनकी अब गाड़ियाँ हमें हर जगह नज़र आती हैं, और ये भी पता चला है कि कभी वो एक शहर में जाती हैं कभी दूसरे शहर में जाती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये आपसे इन्फॉर्मेशन से बेहतर कौन दे सकता है, या हमारे थिंक टैंक से तुकीर शाह साहब देते रहते हैं। जी शायद
2: जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब कोई कंपनी या पहले तो उबर आई, उबर बहुत बड़ी कंपनी है, तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसी की कोई दौर आई नहीं है, सबको पता है। डेनमार्क में जब उबर आई मैं पहले नहीं जाता 2013-14 में, इलीगली तरीके से यहाँ के टैक्सी कानून के मुताबिक नहीं आई थी, 2013-14 की बात है, मैं उधर नहीं जाता, वो लंबी बहस हो जाएगी क्या हुआ, फिर वो यहाँ से निकल गए, ये सबको पता है। अब 2025 फरवरी रिसेंटली ऑलरेडी इनकी 2024 के अक्टूबर सितंबर में ऑलरेडी कुछ लोगों के यहाँ से इनके साथ रवाबत हुए थे उबर के साथ, कि कैसे आपने आना है, ये भी छोड़ दें, ये सबको पता है। 2025 फरवरी में इन्होंने बकायदा आगाज शुरू कर दिया उबर का, ड्राइवर एक टैक्सी कंपनी थी छोटी सारी जिसके अंदर गालिबन 40-50-60-70 टैक्सियां थी, यहाँ 100 कर लें, उनके साथ मिलकर छिल खुद कहते हैं, यानी कि उसके साथ अटैच होके आप आ सकते हैं, खाली उबर नहीं की इजाजत नहीं मिली थी उनको, यानी कि जैसे गायन उबर, यानी कि बिल्कुल खाली उबर जो है क्लीन उबर सिर्फ खाली वो चलाती है, लेकिन उनको किसी किसी कंपनी के साथ सहारा लेके उनको आना पड़ा, और वो आए साथ ही उन्होंने यहाँ पर धूम मचा दी। उधर भी हमारे जो पाकिस्तानी वॉनमैन है, मैं भी इंक्लूड हूँ, अपनी बात भी करूंगा, वाले साहब रहे हैं सब समेत, जो मैंने सुना बल्कि सुना अपनी आ, आ, आ, अपने कानों से सुना, लोगों ने कहा ओ कुछ नहीं होता उबर इसके ये ऐसे, मैंने बड़ी सेल्स कैंपों के अंदर भी सुना, वहां पे भी कहना शुरू कर दिया कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स करें, पाकिस्तानी जैसे स्टाइल है हर चीज में रिलैक्स कर जाएं। पता क्या हुआ फिर, उबर ने जनाब इनको ना फरवरी में आई, जून जुलाई में जनाब इनका एग्रीमेंट हो गया सबसे बड़ी कंपनी डैन टैक्सी के साथ, यानी जो पहले कुरियर होती थी डैन टैक्सी, जो पूरे शेलन में है, उसके बाद पूरे यूलन में और पूरे स्वीडन में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है। एग्रीमेंट क्या हुआ, उन्होंने खरीद ली, ऊबर ने डैन टैक्सी खरीद ली। ये किसी को नहीं पता कितने मिलियार्ड की खरीदी है या कितने मिलियंस की खरीदी है। कंपनी बहुत बड़ी है, उनके पास इनकम है, इन चेक जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा है, और उनके पास अवैध खून है, यानी कि उनके पास कंपनी के खून छो खोसला, उनके पास DSP है, उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ये जो हैं उनके पास। ये सिर्फ खाली टैक्सी नहीं होती जिसे आप मैंने बुक कराई है, ये तो कोई इसके ऊपर नहीं आपकी कंपनी चलती। इनके पास बड़े बड़े जो है ना आउटसेलिंग एग्रीमेंट हैं डेनमार्क में, खाली कोपन एग्रीमेंट नहीं है, पूरा शेलैंड, उसके बाद यूलैंड और फ्यून सारा, बहुत बड़े बड़े कितने मिलियंस की है, 200-300 कपल ऑफ 1400 मिलियंस की इनकी आउट चले हैं, वो उन्होंने खरीद ली उबर ने, और उबर ये जो ना पूरी मार्केट तकरीबन वो ले गया तकरीबन। अब क्या हुआ कि 2026 में, यानी कि जून जुलाई जून में ये इसकी बाजगश्त हुई, ग्रीन SM, यानी कि वियतनाम टैक्सी तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका असल नाम जो है ग्रीन SM है। ग्रीन SM ऑलरेडी जो है ना वियतनाम और चाइना और इंडिया और इन मुल्कों में आ चुकी है 2025 में। यार वियतनाम तो पहले की चल रही थी, और ग्रीन टैक्सी ग्रीन SM जो है, इसके बाद स्वीडन, इसके बाद जर्मन, इसके बाद ओस्लो, स्वीडन इसी साल जा रही है। और उन्होंने जो मुझे जो मैंने देखा सुना है, उन्होंने ये चीजें कोई फ्री नहीं होती, उन्होंने ये डेनमार्क में हेसल हॉल, यानी कि एवल हॉल जो इंडस्ट्री कुछ है सबको पता है, उन्होंने वहां पर जो बहुत बड़ा ले है, जो इसे स्वीडिश में कहते हैं लॉगर, जो ले है वो बहुत ही बड़ा, मैं समझता तो 5-6 हजार करोड़ मीटर से ज्यादा कर लें बार भी, वो उन्होंने पहले तो ये समझे थे कि उन्होंने लाया किया है, लेकिन जो मैंने पूछा है उधर उनसे, उन्होंने कहा उन्होंने खरीद लिया है, तो हो सकता है खरीद लिया हो, तो ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि वो उसके उसी को पीछे से या आगे से तोड़ के तो उसका ब्यूगा करने लगे हैं, तो उसके अंदर उनको काफी जो है ना उन्होंने उसको एडजस्टमेंट करनी है। एक तो ये हो गया। अब ये 600 गाड़ियां जो है ना, ये इनकी तकरीबन ऑलरेडी 400 या 300 या के करीब, ये आधी से ज्यादा गाड़ियां इनकी ऑकुपाइड हो गई हैं, जो चढ़ गई हैं, ड्राइवर इनके तकरीबन 500 से ज्यादा जो है, या 500 के करीब जो है ना एग्रीमेंट बन चुकी हैं, किसी ने सितंबर में शुरू करना है, किसी ने अगस्त में, किसी ने नवंबर में, वगैरह वगैरह, और वो साथ में कोर्स भी करा रहे हैं साथ में। अब किसी कंपनी ने बाहर से इतनी बड़ी इन्वेस्ट की है, वो खाली इन्वेस्ट जो इधर डेनमार्क में की है, स्वीडन में करने जा रहा है, जर्मन में है, और यूरोप के मुल्कों में करने जा रहा है, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि उसके पीछे स्टेट नहीं है, उसके पीछे जो स्टेट है वो उन्होंने थपकी नहीं दी? ये ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे कोई इन्वेस्ट नहीं करता जब तक मुल्क जो है वो आपको वेलकम ना करें और आपकी हेल्प ना करें, जो जो चीज उन्हें जो जो चीजें उनके चाहिए होती हैं, जैसे कि अब वो भी चाहेंगे कि हमारी हमारी भी औचले हों कमोनों के साथ, फ्लेक्स के साथ, कॉन्ट्रो खोचले हों, ये वगैरह वगैरह ये चीजें। मेरा ये ख्याल है कि वो इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं, और वो ये मार्केट लेने की कोशिश करेंगे। ये मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे क्यों, लेकिन उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उनको वो लोन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल है उनके, और वो इसी पे काम करने लगे हुए हैं। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ। आपने बात की थी वोनमैन, पक्षनी, अरबी, तुर्की, डेनिश, जितने भी वोनमैन है, हम अपनी भी बात करेंगे, पक्षनी ये सबसे ज्यादा है। इनका फ्यूचर मुझे कोई अब अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये मार्केट उन्होंने लेके जानी है, क्योंकि वो खुद ही वोनमैन है। एक तो ये हो गया कि वो इसे उर्दू में आप आसानी से ये कह लें कि वो एक ऐप नहीं है ग्रीन SM, क्योंकि जो ऊबर है वो एक खाली ऐप है, वो आप ऐप लेते हैं या उसको आप उसका जो 20% या 18% या 25% उसका आप पे करते हैं, लेकिन गाड़ी आपकी अपनी होती है, मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊंगा, लेकिन जो ग्रीन SM है गाड़ियों की अपनी है, वो खुद ही बोनमैन है और खुद ही वो गाड़ियां भी बनाते हैं अपनी, वो कंपनी उनकी गाड़ियां भी अपनी ही कंपनी में बनती हैं, और वो कंटेनर के कंटेनर यहाँ यूरोप की तरफ वो रवाना है, जिधर जिधर उन्होंने ये करना है, पड़ाव डालना है। अब ये जो चीज है, ये मुझे जो शक है, ये ये वोमेन की मोनोपोली खत्म करने के लिए इन्होंने सिर्फ डेनमार्क नहीं दूसरे मुल्कों में भी जिसे कहते हैं आया है ना छाक्षा आया वोमेन, ये उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि इसको अपने पास रखो अपने कंट्रोल में कर लो। इस तरह की उन्होंने कंपनी को दावत दी है जो ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुकी थी, तो उनके साथ ये बमामला जो है इनके 1-1.5 साल से बैक चैनल चल रहे थे। ऐसे कोई नहीं आ जाता अचानक, ऐसे कोई नहीं पैसा इन्वेस्ट करता कहते हैं वो कहते हैं हेल मलियान या इन मलियाड। और आपको पता है कि जो 400-500 ड्राइवर अभी चढ़े आए हैं उनको अगले महीने तनख्वाह भी देनी है, और वो तनख्वाह अभी कोई उनकी इनकम नहीं हुई, अभी उनकी ऑफिसें जो है चल रही है या नहीं चल रही वो बात की बात है, वो तो आपको पता लग जाएगा सबको। लेकिन उन्होंने लोन तो देना है, कुछ लोगों को लोन मिल गया जिन्होंने ऑलरेडी जुलाई में शुरू किया था काम, अब तो अगस्त का एंड आ गया तो उनको लोन मिल गया मुझे सुनने में, और उनको पूरा लोन मिला है। मैंने खुद पूछा है, मैंने पूछा आपको लोन मिला है, उन्होंने कहा जी मुझे लोन मिल गया जो इस महीने के उनको मिलना था और मैं जुलाई के, तो वो बहुत से लोगों को मिल गया
1: मतलब है
2: जो
1: कि ये पैसा सारा सिस्टम में आ गया, इस पर लेफ्ट राइट नहीं हो सकता।
2: मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें लोन मिला ना, क्योंकि हो एलआर के साथ उन्होंने ये जो जो जो जो जो लोन जो यहाँ के शनि के लोन नहीं तनखाओं के जो कानून है कवानीन है पेंशन ऑर्डनिंग के साथ उन्होंने मिलके बनाए हैं कि इसमें कोई हंकी बैंकी नहीं है, उसमें मिलके बना के उन्होंने वो बैठे हैं उनके साथ बना है सारा कुछ। उसमें ये जो अभी जो पैसे जो इनके चंद 150 जो पहले थे इनके शोफेयर उनको लोन मिला ना, वो हालांकि उनकी इनकम कोई नहीं हुई ड्राइवरों की, बहुत कम इनकम ना होने के बराबर, क्योंकि उनके ऐप में भी छुआ नहीं है जो आए वो कल छुआ ही उठा रहे हैं, अगर वो उठाते हैं और अपने 7.5 घंटों में 7.5 घंटे उसके आधा घंटा था उसका 8 घंटे 7.5 घंटे में अपने काम करके जो बनाया है वही है, उसके ऊपर वो उनके कोई इतराजात नहीं है इस वक्त। और पहले बाद में भी जब उनके पास ऐप में छुआ आ जाएंगे जो उनकी औचले होंगी, आपने हर छुए को यस करना है, आपने ना ही नहीं करना क्योंकि आप काम कर रहे हैं आपको वो तनखा दे रहे हैं, वो उन्होंने इसके ऊपर रखी हुई है कुछ परसेंटेज, यानी कि आप किसी को वो क्या कहते हैं वो कहते हैं वॉशरूम भी आ जाता है या वगैरह वगैरह 2-4 मिनट के लिए तो आप उसमें पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपका आधे घंटे का पॉज एक लग है, लेकिन जब आपको छुआ आ रहा है आपने यस करनी है क्योंकि आप तनखा ले रहे हैं उनसे पक्की, यानी कि फेस्ट लोन ले रहे हैं आप उनसे, तो आप मजाज नहीं है कोई ना करने के किसी छुए के जब जब ये शुरू होगा उनका बकायदा, अभी तो चल रहा है। और उसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ कि लोन मिले हैं 170-180 जो शुफे पहले के थे वो कितने मिलियंस होंगे, वो उन्होंने अपने जो उनके पास जो उनका अकाउंट या जो भी वो पैसा लेके आए हैं अपने पास से दिए हैं। मैं ये बता दूं कि अपने पास से कोई नहीं देता, ये तो अभी दिए हैं जब उनकी औचलें वगैरह चल जाएंगी, जब उनके साथ कमोनों के साथ या जिधर भी वो करना चाह रहे हो जाएंगी, कितने वो मिलियंस की इतनी कमोने हैं सैकड़ों कमोने हैं यहाँ पर शेलन में, जब उनके साथ हो जाएंगी अगर आदियों के साथ भी हो जाए जब हो जाएंगी, तो फिर ये जो पैसा उन्होंने अपनी जेब से लगाया ऐसी जो जो बिजनेसमैन काबिल बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो फिर उनका वापस डबल से ज्यादा वापस आएगा, तो ये है उनकी जो है प्लानिंग।
1: इसका मतलब है उन्होंने
2: और
1: अपना जो इन्वेस्ट किया उसको सबसे पहले सेव किया है, गवर्नमेंट के साथ जो है अपनी बातें कमून के साथ अपने एग्रीमेंट किए हैं जहाँ से ये सिस्टम चलता है, अब वो जो है कोई पैसा जो है वो कोई आगे पीछे नहीं हो सकता कंपनी का।
2: देखिए जी मैंने पहले भी आपको बताया कि ये किसी को उन्होंने नहीं बताया, यहाँ पर किसी मीडिया को नहीं बताया कि अभी फिलहाल बहुत से लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे आए किसने कौन इनके पीछे है, ये सिर्फ क्यास रही हैं। लेकिन जो आदमी आप जैसा और यहाँ पर सब लोग अकल आप जैसे लोग अकल बूझ रखते हैं कि ये तो खुद भी सोचे ना कि जब आप 1 दिन 10 दिन 1 माह 1.5 माह हो गया आप देख रहे हैं तो फिर पता आपको लग जाता है, जब आप अंदर भी जाते हैं पूछते हैं थोड़ा बहुत तो आपको ये पता लग जाता है कि ये इसके पीछे स्टेट इन्वॉल्व है वो साथ है। ऐसे ही दूसरे मुल्क में आप अपना मैं अगर बिजनेस लेके जाऊं मैं कहूं जी मेरे पास है 1 बिलियन डॉलर है मैं यहाँ बिजनेस, आपकी आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, आपकी स्टेट करेगी वो कहेगी पैसा आ रहा है आपकी मदद करेंगे, आपको जो जो चीज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे आपके वगैरह वगैरह, तो इसी तरह
1: फैसिलिटेट किया जाता है। चलिए शायद आते हैं
2: इसी तरह
1: आप
2: बिल्कुल
1: इसी तरह जिस तरह आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है इलेक्शन किस तरह लड़े जाते हैं पार्टियों में किस तरह लड़े जाते हैं, ये जो कारोबारी लिहाज से जो लोकल ये टैक्सी चलती है इसका क्या सिस्टम होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे मुल्कों में ये चीज़ें चली जाती हैं, شاید ہمارے ملک میں جہاں بھی پوری دنیا میں ہماری سیاسی پارٹیاں ساری خود کفیل ہیں، پورے ملکوں میں ان کی بھی ٹیکسیاں وہاں موجود ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو پارکنگ پلیس ہیں، ساری پارٹیاں یہ پارکنگ پلیس ہیں، یہ سیاستدانوں کی ٹیکسیاں ہیں، ان کی جو ہے وہ پارکنگ کی جگہ ہے. نہ کوئی ہمارا ممبر بنا پارلیمنٹ میں، کوپنہاگن کی بات کروں گا، اگر ڈنمارک کی بات کروں گا، سویڈن میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے کتنے ممبر بنتے ہیں، پارلیمنٹ کے بنتے ہیں، تو کہیں بھی ہم فٹ نہیں ہو رہے. اب پاکستان کی ساری چیزوں کو ملا کے دیکھ رہے تو لیکن زیادہ سیاست جو ہے وہ پاکستان کی جاتی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں سیاست کو پاکستان کو؟
2: میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ نے سویڈن کے الیکشنوں کی بات کی تھی اور ڈنمارک کے، میں نے یہی بتایا کہ جب تک آپ اپنی ملک پاکستان کی جو سیاست ہے، اگر یہ کوئی کسی کو اگر غلط لگے، میں اسے معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ سامعین سن رہے ہیں، یار پاکستان کی سیاست آپ کو سب کو پتا بہت گندی سیاست ہے. وہ گندی سیاست کو وہ کہتے ہیں سمجھنے کے لیے ہزاروں سال بھی کم ہے. تو وہ کیونکہ پاکستان کی سیاست تو ہر سیکنڈ بعد بدلتی ہے، وہ سیاست انہوں نے ہوئی. تو آپ جب اس سیاست کو، میں یہ بتا رہا ہوں، ادھر جہاں رہتے ہیں ادھر بھی کریں گے تو پھر یہاں پر آپ اپنا ہی مذاق بنوا لیں گے. لوگ مذاق کرتے ہیں دیکھ کے، یہ کوئی خوشی نہیں لوگوں کو ہو رہی ہوتی، دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے لوگ. سے مراد ہے کہ پاکستانی بھی اور دوسری نیشنیں بھی، کسی کو خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، وہ آپ کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں مسخرے سارے. میں آپ نے بات کی پاکستانی جو سیاست کرتے ہیں یہاں پر یورپ میں، میں حالی ڈنمارک کی بات نہیں کر رہا. تو وہ پھر جب آپ اس طرح کے مسخرہ پن کریں گے تو لوگوں نے، تو آپ لوگوں میں، آپ کمیونٹیوں میں، دوسری کمیونٹی میں مذاق بنائیں گے. یہ جو ڈینش ہیں، سویڈش ہیں، نارویجن ہیں، جرمن، جہاں بھی چلے جائیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کو سارا پتا ہوتا ہے، وہ یہ لوگ خاموش طبیعت کے ہیں، خاموشی سے سارا کچھ کرتے ہیں. یہ باتیں نہیں زیادہ کرتے، جنرلی بات کرتا ہوں. ان میں بھی لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن وہ جنرلی ایسے نہیں ہیں. یہ لوگ باتیں نہیں کرتے، یہ کام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان ملکوں میں ایسا نہیں تھا، ان ملکوں میں گندی سیاستیں نہیں تھیں، ان ملکوں میں جبریت نہیں تھی. فرونی 100 سال پہلے ایسے ہی تھا، 100 سال پہلے یہ انہوں نے یہ سسٹم جو ہے نا لڑ کے قوموں نے، ان کی قوم لڑی، ان کے لوگ لڑے، بڑی قربانیاں دی ہیں ان کے لوگوں نے. حالی جنگیں نہیں لڑی انہوں نے ایک دوسرے سے، انہوں نے سیاسی، یہ جو سیاسی اس کے لیے جمہوریت کے لیے لڑے. یہاں تو بادشاہ تھی پورے یورپ میں بادشاہ تھی پورے. آپ کو پتہ ہے، آپ ہسٹری پڑھیں جا کے، سویڈن کی بات کر لیں، ڈنمارک کی بات کریں، یہاں تو ظلم تھا. یہ بادشاہ جو ہوتی ہے نا، ظلم ہی ہوتا ہے. یہ ایک بندہ سب کو کہہ رہا ہے جو میں نے کہنا وہی آپ نے ماننا ہے، ادھر ایسے تھا. لیکن پھر یہاں قومیں لڑیں، لڑنے کے بغیر، آپ قربانیوں کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ سسٹم ہی بادشاہ کے سارا تھا قبضے میں. بادشاہ جو ہے یورپ کا، یعنی کہ سویڈن کا یا ناروے کا، اس کی تھا انصاف وہی کرتا تھا. جج جو ہے وہ انصاف جس اس نے کرنا ہے وہ بادشاہ کے حکم پر اس نے کرنا ہے، تو کہے کا جج. ادھر ایسے تھا، پھر یہ لوگ لڑے، ان لوگوں نے قربانیاں دی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کئی سال لڑتے رہے، آخر میں یہ ان کی جیت ہوئی. گھر بیٹھنے سے، ہاتھ میں ہاتھ باندھنے سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، مسخرہ پن، فضولیات، یہ چیپ حرکتیں، یار یہ کیا ہے؟ کیا ہو آپ؟ جب تک آپ ان چیزوں سے نہیں نکلو گے آپ ایسے ہی رہو گے جیسے 1400 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ جہلیت ہے، آپ اس سے بھی آگے نکل جاؤ گے. 1400 سال کی جو جہلیت سنتے تھے نا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی آگے نکل جاؤ گے، بلکہ نکل گئے ہو. تو یہ ہے کہ آپ عید ملکوں میں رہ کے ان قوموں سے جب نہیں سیکھ پا رہے، تو یار پھر تو میں کیا اس کے اوپر کروں تبصرہ، مزید تبصرہ ہی پہ رہ جاتے ہیں.
1: تبصرہ کیا، آپ دیکھیں نا، منافق آدمی جو ہوتا ہے، جس کے منہ پہ ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، دوسرے پہ چلا جاتا ہے. تو یہی سیاسی پارٹیوں کا ہے،
2: یہی ہمارے جو سسٹم کا المیہ ہے کہ آپ دیکھو کیا کر رہے ہو. میں غالباً یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں ادھر سویڈن کا بھی، چلو بات کر لیتا ہوں. یار سویڈن کے اپنے ملک کی جہاں رہتا ہوں میں، جی فوٹو لگ گئی ہیں، امبیسی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، امبیسی کو الودائی، اگر میرے سے اردو، الودائی اس کو سلام پیش کر رہا ہے، فوٹو لگا دی ہے. یار کیا ہو گیا ہے؟ यहाँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं, यूरोप के जो एम्बेसडर उधर गए होते हैं दूसरे मुल्कों के एम्बेसी में, पता ही नहीं किसी को तक कब आ गया क्या ही नहीं। वहां के जो उधर के लोग हैं जिन मुल्कों में, स्पेन में डैनिश रहते हैं, पता ही किसी को डैनिश को नहीं है। स्पेन में डैनिश रहते हैं ना, अमेरिका में डैनिश रहते हैं, उधर एम्बेसडर है ना उनके, आते हैं, किसी को पता, देखिए किसी किसी किसी डैनिश की फोटो, आम शहरी की, एम्बेसडर को सलाम कर रहे जाके, फोटो लाती फेसबुक पे, हाय यार, देख के मुझे हंसी आ जाती है, क्या कर रहे हैं, कभी हो गया यार, चले गए हो आप कोई अपने काम से, उन्होंने क्या फाड़ के लाती, चलो जी हो गए, सलाम, जराना पेश, वो तू कौन है जराना, तू कौन होना है जराना पेश करने वास्ते, जोहराना, ये अगर उर्दू मेरी गलत है तो जोहराना इसी को कहते हैं ना खाने को, राजा साहब जोहराना जी आपने पेश कर दी है,
1: बिल्कुल
2: मास्टर
1: ठीक
2: जा
1: बोल
2: रहे
1: रहे
2: हैं
1: हैं,
2: बस,
1: बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बड़ी
2: यार
1: अच्छी बात है, आप पैदा
2: ये
1: यहाँ
2: कोई
1: हुए
2: बात,
1: उर्दू बोल रहे हैं।
2: ये कोई बात है करने वाली यार, ये मैं देख के रहा होता हूँ, फोटो लग गई है यार, इन चीजों से निकल आओ, एम्बेसडर आया एहतराम के काबिल है, जा रहा है, खत्म हो गई बात, पैसे हमारे हैं, खजाने से निकल रहे हैं, तू कौन है जोहराना पेश कराने वाला, नो इस तरह आपके मुल्क में ना जो ये ना ये काम खराब हुए हुए हैं, नीचे दिखाने के लिए दूसरे को,
1: इसका हल क्या है,
2: मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं
1: इसका
2: कह रहा
1: हल
2: कि मुझे कोई
1: बताएं,
2: कर
1: हल
2: सके,
1: क्या है? आप चूंकि यहाँ पैदा हुए, आप उर्दू भी
2: मैंने
1: बोलते
2: अभी
1: हैं,
2: इसका
1: स्वीडिश भी
2: अभी
1: बोलते हैं,
2: अभी
1: डेनिश भी बोलते हैं, इंग्लिश भी
2: मैंने
1: बोलते
2: आप
1: हैं।
2: मैंने आपको अभी इसका हल बताया है, जब तक आप दूसरे कौमों की तरह, दूसरे जो लोग हैं और भी है ना उनकी तरह मुनज़म नहीं होंगे, लेकिन इन्हें मुनज़म होना नहीं है, मुनज़म नहीं होंगे आप ऐसे ही रहेंगे, आप ही आपने खुद ही कहा है, मैं मुनाफ़कत, हाली मुनाफ़कत नहीं है, झूठ, मुनाफ़कत, मकारी, तीन चीजें, मकारी आपके मुंह के पर नजर आ जाती है जब वो मुस्कुरा रहा होता है कि ये मकार आदमी, मुनाफ़कत तो है ही है, मकारी सबसे बड़ी चीज है, फिर झूठ, ये तीन चीजें आप मेरा वो डीपी देखें, बड़ा
1: शायद एक
2: मशहूर है मेरा,
1: बात याद रखें कि पिछले दिनों बहस हो रही थी कि बीमारियां होती हैं ना, एक मालिया खौलिया की बीमारी होती है, हम इसी को लेते हैं, कोई जहनी मरीज किसी को कहता है, लेकिन और भी बीमारियां हैं, अगर देखा जाए तो बंदों का कसूर भी नहीं होता, वो चूंकि वो
2: बिल्कुल नहीं
1: बीमारियां
2: होता।
1: उनको लगी होती हैं, आप उनका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए
2: अभी
1: साइकोलॉजिस्ट जब बैठता है ना, वो उसको घंटा घंटा दो दो घंटे टाइम देता है, खाली उससे बातें करते रहते हैं, वो जहनी मरीज इस तरह के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इसको ये बीमारी है।
2: राजा साहब अभी आप मेरी वो डीपी जो है ना उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, तो काइंडली वो डीपी जो है मेरी उसका जो सामने जो मेरा वो है उसको पढ़ें, अभी पढ़ें तो, ताकि आपको मैं बताता हूँ क्या है वो।
1: बड़ी अच्छी बात है, और आप अक्सर बात इस पर करते भी रहते हैं, लिखा हुआ है आपकी जो शराखत है जो आपने अपने लगाया, डीपी लगाया हुआ है, मुनाफ़क़त दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह पे ऊपर दोस्ती का नाम है। ये तो एक ऐसा
2: यस
1: खूबसूरत अल्फाज हैं, शेर लिखे हैं, ये सबके लिए, ये किसी की मुखालफत में नहीं है, किसी के हक में नहीं है।
2: ये चीज, जब ये चीज आप खत्म कर देंगे ना, ये जो कौम है पूरी, आपकी हर चीज ठीक हो जाएगी, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है मुश्किल काम है हमारी, खासकर कौम हम लोगों के लिए मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन जब ये चीज खत्म हो जाएगी ना, ये जो मैंने अभी अब लिखा हुआ है ये सारा, तो आप जो है ना राह रास्त में आ जाएंगे, लेकिन मुश्किल और कठिन है, ये नहीं पता कब है, शायद 100 साल लग जाए, 100 साल बड़ा, शायद 1 साल में खत्म हो जाए, लेकिन 100 साल में पता नहीं, हम रहे, हम तो नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी नहीं होंगे, तो 100 साल किसने देखा है, लेकिन वैसे भी ऑलमोस्ट हमें
1: आप
2: 78 साल
1: देखें
2: हो
1: ना,
2: गए हैं।
1: इस जमहूरी निज़ाम में अब हम जमहूरियत की भी नफ़ी करना शुरू हो गए हैं, ये भी प्रोपगंडा हम लोग शुरू कर देते हैं। इस जमहूरी नाम रहते हुए अगर आपको वोट मिले, आप मेंबर बन गए, आपको वोट मिले तो अभी रीजन के मेंबर मिल गए, अगर आपको वोट मिले हैं तो आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, पार्लियामेंट को आप वोट मिले तो आप वज़ीर आज़म बन गए, ये तो एक जमहूरी निज़ाम है, कौन किसी को रोक रहा है?
2: कोई किसी को नहीं रोक रहा, और राजा साहब एक और बात, जब आप इलेक्ट हो गए आते हैं ना, आवाम आपको सिलेक्ट करती है, तो फिर इलेक्ट हो गए हैं आप, तो आप उसमें आ गए हैं, तो जब आपने किसी वध में, ये इधर की बात कर रहा हूँ अपने यूरोप की, तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, भाई हैं, बहने हैं, तो वो जो वादा करते हैं ना, वो फिर अपना वादा 100% नहीं तो कम से कम 80-90% पूरा किया करें अपनी अपने अपने क्या कहते हैं वोटरों के साथ, ये मेरा बार बार कहना है। तो मैं आप वाली बात फिर, जब तक आप अपने सारे ओवरसीज पूरी दुनिया में, जब तक आप पाकिस्तानी गंदी सियासत, गंदी तरीन सियासत है, अच्छी सियासत भी लोग करते हैं, लेकिन गंदी तरीन सियासत को आप खत्म नहीं ना करेंगे, आप तरक्की भी नहीं कर सकते किसी चीज में। यूरोप में भी पीछे रह जाएंगे, हर एक से, हर महाज में पीछे रह जाएंगे, नहीं कर सकते तरक्की ये, क्योंकि यही अल्लाह ताला का सूल है, यही कानून है। अल्लाह ताला के सूल और कानूनों को तो नहीं आप रद्द कर सकते ना। अल्लाह ताला तो देख रहा है हर वक्त, अल्लाह ताला तो आपको लम्हा लम्हा देख रहा, सुन रहे, उसके साथ तो नहीं ना आप कहते मकारी यारी कर सकते। यारी भी तो करते हैं ना हम लोग।
1: देखिए ना, अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों से मना किया, क्या वो काम हम करते नहीं है?
2: हम वो काम नहीं करते। अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया हम वो काम करते हैं। अल्लाह ताला के रसूल ने जिन चीजों से मना किया वो काम कर रहे हैं, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। लेकिन ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये दीन को भी इस्तेमाल करते हैं यार, दीन को भी। दीन भी आज कुरान भी आपको आज कल पैसों में बिकता है, दीन भी आपका बिक रहा है पैसों में। यानी कि सुबह दीन को इस्तेमाल करता है, रात को शैतान बना होता है बंदा, वही दोबारा सुबह या रात को शैतान है वो पूरा। सुबह वो दीन को इस्तेमाल कर रहा है, टोपी पहन के अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो क्या खत्म हो रहे हैं यार मी शरीफ के फलां जगह, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार दीन को तो ना इस्तेमाल करो। फिर अपना दीन आप अपने पास छुप के अल्लाह के साथ करो, इसका चर्चा ना करो ऐसे। चर्चा वो करते हुए अच्छे लगते हैं जो माशरा सुलझा हो, जिसमें कोई हलाकियात हो। जिस माशरे में हलाकियात नहीं, वो अपने दीन का क्या चर्चा करेंगे? क्योंकि उसने तो अपने आप से शुरू करना है। मैं कैसे चर्चा करूं अपने दीन का? हमारे हमारे हमारे मुल्क में चले ले लेते हैं, कोई हलाकियात ही नहीं है, बेहयाई उधर उरूज पर, उस पर बात करेंगे तो हंसेंगे आगे से। ये तो यार आप क्या बात कर रहे हैं शाह साहब, यहाँ तो ये तो आम हो गई है चीजें यहाँ पर।
1: मुफ्ती कवि कितने देखे हुए हैं पाकिस्तान में?
2: क्या अब मैं क्या बात करूं इनके ऊपर?
1: ये देखिए, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, शायद ये देखें, ये जो बच्चे यहाँ पैदा हुए ना, ये अब सवाल करते हैं। जिस तरह आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप यहाँ को देख रहे हैं, तो सवाल करते रहे, मुनाफ़त की बात करते हैं। आपने लिखा हुआ है कि मुनाफ़त दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह के ऊपर दोस्ती का नाम है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं और छुपा के नहीं कर रहे। आप देखें ना, मुनाफ़त क्या होता है। कई दफ़ा हमने इस पर जो है प्रोग्राम किए, कई दफ़ा उलमा ने इस पर बात की। अल्लाह ताला कहता है कि जो मैं मुनाफ़त को माफ़ नहीं करूँगा, जो मेरे मुकाबले में खड़ा होता है उसको माफ़, जो मेरे साथ किसी को जोड़ता है मैं माफ़ नहीं करूँगा, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें मैं माफ़ कर दूँगा। जन्नत दोज़ख़ किस लिए बनाए? जन्नत दोज़ख़ को मजाक तो नहीं है, जन्नत दोज़ख़ बनाए गए इन्हीं वजह से बनाए गए हैं, तो ये सजाएं मिलेंगी। वो कोई बंदे कहते हैं जी बस एक बार पढ़ने से 10 हज का सवाब हो जाता है, फिर हज का सवाब पढ़ने का हो जाता है तो खाना काबा में क्यों जाते हैं? आज उधर हज करने के लिए क्यों मक्का मदीना जाते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें
2: मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो।
1: जी जी,
2: एक तो ये चीजें है ना, अगर आप मेरी अगर लोग दोस्त यहाँ पर जो सुन रहे हैं सामीन, वो इसको समझेंगे, आप भी समझेंगे। एक तो हमारे में ये बहुत ज्यादा है, एक इसको मुनाफ़िकत ही कह लें, तल्लुकात की बेस पर, यानी कि तल्लुकात बनाते हैं यार। यानी कि यार आपको पता है कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन पता है आपको सच क्या है, लेकिन आप तल्लुकात की बेस पर आप वो सच को जो छुपा रहे हैं, यानी कि उसे मुंह फेर रहे हैं। यानी कि मैंने ये पढ़ा था, अगर गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं ये कोड यहाँ गलत नहीं करना चाहता, किसी हदीस में पढ़ा था कि किसी सहाबा ने फलां मैं यहाँ गलत ना हो जाए क्योंकि मैं मेरे पास ऑफिस में नहीं हूँ, मैं देख नहीं सकता, पूछा कि आपके पीछे तो आप अकेले रह गए हैं, उधर तो 1000 बंदा खड़ा है। उसने कहा अल्लाह ताला के अकामत के खिलाफ अगर 1000 बंदा भी हो जाए, मैं अकेला रह जाऊं, तो मैं सच के साथ ही खड़ा होऊंगा। ऐसे ही है ये लोग पता क्या करते हैं, वो यार वो तलुका ही कोई नहीं, वो तो जानते ही कोई नहीं, ये साढ़े नाल भी 1000 बंदा है, 100 बंदा है, 200 बंदा खलोता था, ऐसे बात करते हैं ये ऐसे हम लोग हो गए हुए। यानी कि तल्लुकात की बेस पर एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, चाहे वो गलती सही है, चाहे मैं गलत हूं। आपको पता है
1: पढ़ते रहते हैं सारी चीजें,
2: आपको पता है, आपको पता है कि जो जो बंदा कोई भी हो दुनिया में, आपने तारीख पढ़ी है, जो सच की बात करेगा उसके उसके उसके दुश्मन होंगे सिर्फ, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ना उसके दोस्त होंगे। यही अल्लाह ताला को पसंद है।
1: आप देखें, जब बात की जाती है ना कि सारी दुनिया में आप देख लें कि बाज जगह आपको पता है कि गुलाम خریدے جاتے تھے، منڈیاں لگتی تھی، ان کی قیمت دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، غلاموں میں بھی قسمیں ہوتی تھی، کتنی قیمت کا غلام ہے کتنے میں، اور دوسرا غلام دوسرے کو بہتر ملتے تھے، مالک غلام کو بیچ دیتا تھا، یہ ہم نے سب پڑھا. لیکن ہم 2026 میں رہ رہے ہیں، یہاں بھی غلام بکتے ہیں، سیاسی غلام.
2: دیکھ لیں آپ،
1: 2026 کا ہوتا ہے نا، یہاں بھی ہم یہاں کی بات کرتے ہیں، ڈنمارک کی، ان کا تو آئین ہے، قانون ہے، ہمیں احترام کرنا چاہیے، یہ قانون کے اندر رہتے ہیں، قانون کے نیچے رہتے ہیں، ایکول رائٹس کی یہ حمایت کرتے ہیں، شادی کی اجازت ہے، تو کیا مسلمان خریدتے نہیں ہیں جا کر، ان کے گلوں میں ہار نہیں ڈالتے؟
2: بالکل بالکل ٹھیک بات کی آپ نے.
1: تو یہ بہت ساری چیزیں ہم ریالٹی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنی تسلی کرنے کے لیے، بھائی یہاں کا قانون ہے، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کا آئین میں اس کو جو ہے اس پر لکھا ہوا ہے، تو ہمیں کیا کہ جس ملک کے ہم کسی کے ملک کے آئین کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ رہتے ہم یہ ڈنمارک میں، سیاست ہم پتہ نہیں کہاں کی کر رہے ہوتے ہیں. آپ بندے ہمارے یہاں آ جاتے ہیں، جو آپ میں بھی

0: हदायत तो अल्लाह ताला ने, तो मुझे लगता है आपको पता है, मेरे ये पढ़ा हुआ है कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाने एक दिन अचानक ही। तो मुझे तो लगता है कि इधर तो तौबा के दरवाजे पहले बंद हो गए हुए हैं, इधर हमारे ऊपर, इस कौम के ऊपर, कि तौबा ही कोई नहीं, कोई दुआ ही नहीं कबूल हो रही। बता दें कोई दुआ कबूल हुई हो, दुआएं करते हैं ना सारे, हमारी माँ बहनें बेटियां सब कर रही हैं, मुल्क के ऊपर भी कर रही हैं, सबके ऊपर, कि हमारा कोई परेशाने हाल नहीं है, कोई वो कोई दुआ कबूल हो रही है। मुझे ही लगता है कि यहाँ तो अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे, अल्लाह ताला नाराज है बड़ा सख्त। अकल भी तो काम करती है ना, कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने उर्दू के साथ इंग्लिश के साथ, उसको तो बार बार पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। उसमें अल्लाह ताला ने यही चीजें फरमाई हुई हैं कि मैं मेहरबान हूँ नहायत। अपने इंसान के ऊपर बहुत मेहरबान है अल्लाह ताला, बहुत प्यार करने वाला है इंसान को। तो अल्लाह ताला ही ये कहता है कि उसको हो जाता है कि मैं अपने इंसान को कोई ना पहुंचाऊं, चाहे वो जितना मर्जी जालम भी हो, कर देता है। शिर्क नहीं माफ करता अल्लाह ताला किसी को जो उसके अगेंस्ट आ जाए कि मैं खुदा हूं। और दूसरी बात, ये अय्यारी मकारी और झूठ और मुनाफकत, तो देख लें आप
1: शायद
0: हम
1: मैं ये
0: कितने
1: कहता कि
0: हम
1: लोगों ने एक अपना बनाया हुआ है ना। अब यहाँ जितने भी मेले हुए हैं, जितने भी, और इसमें कामयाबी का राज क्या था? मैंगो फेस्टिवल, उसमें आम लगे हुए हैं, लोग जो है वो जा रहे हैं, ख्वातीन जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, फैमिली जा रहे हैं, कहीं सहूलियात ज़्यादा हैं, कहीं सहूलियात थोड़ी हैं। जो मैंने एनालाइज़ किया है कि लोग दिनों पर नहीं जाते, लोग स्टालों पर जाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें सफा साबित हुई हैं।
0: बिल्कुल इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने खुद ही बताया कि लोग यहाँ पर कोई छोटी मोटी इंटरटेनमेंट चाहते हैं, इस तरह की इंटरटेनमेंट जो हटके, दूसरी चीजों से हटके, जो की है स्टॉलों में कर लें। मैंगो फेस्टिवल एक, जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान का भी, लगता है पता है कि ये पाकिस्तान के आम है, इधर अंग्रेज लोग भी आते हैं, डैनिश भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, इंडियंस भी हैं, सिख भी हैं, मैंने देखे हैं बहुत से लोग, पता लगता है ये पाकिस्तान के आम है, और कईयों को नहीं पता, फिर पता लगता है ये खासकर डैनिश लोगों को आते हैं। और फिर इस तरह आप ये जो है ना, आपकी मशहूरी होती है, इन चीजों को करें हाईलाइट, बजाय कि आप गंदी सियासत करें उसे आप हट जाएं। ये बाकी सबके अपना अपना है, एक राय है ना, मशवरा है ना,
1: जमहूरी
0: किसी को
1: मुल्क है, हर
0: करना।
1: आदमी का हक है,
0: हाँ
1: उसे हक है।
0: हर
1: जो यहाँ
0: आपके
1: बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है, जहाँ कानून ने इजाज़त दी है, कानून कहता है, लेकिन कुछ हदें ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद भी ख्याल करना पड़ता है।
0: बिल्कुल ठीक फरमाया आपने।
1: एक बंदा कहता है यार मुझे कानून इजाज़त देता है, तो खुद भी कुछ चीज़ें होती है ना, खुद भी बंदा कह लगता है यार मैं किसी के दीन की बात गलत ना करूं, उसका दिल हार्ट होगा। तो ये बंदा खुद भी कह सकता है। अब कानून में यहाँ बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन ये तो नहीं आपने सब कुछ वही करना है।
0: यहाँ पर मैं ये बात कहते चलूं, आपने चले ये बात कर ही दी है, किसी के दीन के बारे में खासकर हमें ये बात करते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पहले खुद अपने दीन के मुताबिक चल रहे हैं। जो जो हकामात आपके रब ने और आपके रसूल ने दिए हैं उसके ऊपर आप पूरी तरह पहले अमल कर लें, क्योंकि आपके ऊपर सवाल हो सकता है। आप किसी के दीन के ऊपर, और वैसे भी हमें किसी, हमारे दीन ने ये सिखाया कि आप किसी के दीन के ऊपर किसी किस्म का कोई फतवा या किसी किस्म का ये नहीं लगा सकते कि आप ये करें। और जिन मुल्क ममालिक में आप हम रह रहे हैं, डेनमार्क स्वीडन में, हम यहाँ पर एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज और दूसरे जो मुल्कों के लोग हैं, हम यहाँ पर आए हैं, जब फिर हमने हमने इनके ममालिक के कवानीन का एहतराम करना, ये हमारे दीन में भी है, ये और दीनों में भी है, लेकिन हमारे दीन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दीन में भी है। आप यहाँ पर जबरदस्ती कोई चीज मसला नहीं थी, कानून को आप ये नहीं कर सकते कि ये कानून मुझे पसंद नहीं है तो लिहाजा है, लोग शिद्दत पसंदी जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाती। ये ऐसी है कि जब आप अपने मुल्क में जाते हैं तो आपके साथ वहां क्या होता है, शिद्दत पसंदी करते हैं तो क्या
1: शायद
0: करते हैं,
1: मैं
0: आपको
1: पता नहीं बात करने लगूं,
0: नंगा करके लटका के मारते हैं आपको।
1: शायद
0: इधर जब
1: देखिए
0: आप
1: एक
0: आके
1: बात मैं
0: करूंगे
1: करने लगूं कि सारी सियासी जमातों का मंशूर होता है। क्या सारी जमातें अपने मंशूर पर अमल करती हैं जो उन्होंने खुद मंशूर बनाया होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, वो मंशूर ही था ना, और क्या था?
0: बिल्कुल
1: ठीक है, वो मंशूर था। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर पर हम अमल करते हैं,
0: बिल्कुल नहीं,
1: कोड हम करते हैं? इसी तरह ये जो होता है ना, जब तक आप अपने मंशूर पर अमल नहीं करते, आप जहाँ चाहते हैं, जहाँ आपको दीनी लिहाज से जाते हैं, उस मंशूर पर अमल नहीं करते, हमारा तो किसी बंदे से गिला बनता ही नहीं है।
0: नहीं हम उस मंशूर को को को

0: को कोड करते हैं या उसको हर अमल नहीं करते, कोड करके लोगों को बताते हैं जिसमें उसने कोई अपना मफाद हासिल करना हो, ये भी बताएं।
1: सही बात, सही बात। तो शायद आपका बहुत शुक्रिया, आप ऑफिस से बाहर हैं, आपने कीमती टाइम दिया। मुझे पता है काम करने वाले का बंदा कितना कीमती टाइम होता है, छुट्टी का दिन है। तो ये छुट्टी के जो दिन होते हैं हमने 35-36-40 साल के करीब जो है अपनी आवाम के लिए दिए हैं। आज आपका भी छुट्टी का दिन है, मेरा भी छुट्टी का दिन है, जो हमें सुन रहे हैं उनकी भी छुट्टी है। वो तो गाड़ियों में बैठे हुए, दुकानों में बैठे हुए, पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए, दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हुए सुन रहे, वो तो बड़े इन्जॉय करते हैं। मैं भी जब बैठता हूँ कभी गाड़ी में, कभी दोस्तों के पास, तो जब कोई प्रोग्राम लगा हो तो मैं भी बड़ा इन्जॉय करता हूँ।
0: राजा साहब, मैंने मैंने चले थोड़ी मजाकन बात भी कर लें, मैंने तो आपको मैंने तो आपको छुट्टी पर ही देखा है 25।
1: आप देख लेना, जो कहते हैं कि हम लोगों ने किया क्या, जो मजाक की तरफ हम जब मजाक पे आते हैं, जिन लोगों ने काम किया होता है उन्होंने किया होता है, किसी ने भी किया। अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं है लेकिन उसने जिंदगी में कोई काम किया हो तो उस काम की तो बंदा जो कहता है यार इसने किया हो, बंदा मुझे पसंद नहीं है, इसने काम तो किया। ये एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट नहीं करते, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, गीबत की तरफ चले जाते हैं, मुनाफ़त की तरफ चले जाते हैं।
0: जैसे अगर कल को फर्ज करें मुझे कोई शील्ड मिल गई है, मैं एक वैसी बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं कोई छोड़ेगा इसको शील्ड क्यों मिली है। ये है इधर जो कौमें ना, ये इधर की जो है जाम रहते हैं,
1: चंद लोग होते हैं। देखे ना, कहते होते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, क्या मछली तालाब गंदा कर सकती है?
0: मछली नहीं
1: तालाब गंदा कर सकती। वो कहते हैं एक मछली, इसकी वजाहत है। इसी तरह चंद लोग होते हैं जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और उस पर जो है ना उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने दिल को तसल्ली देते हैं। हर इंसान को अपनी खूबी का भी पता है, खामी का भी पता है, दोस्ती का भी पता है और दोस्ती ना होने का भी पता होता है, मुनाफ़त का भी पता है। लेकिन ये चंद लोग होते हैं, शायद इतनी ज़्यादा लोगों की तादाद नहीं, बहुत यहाँ सादे लोग हैं, बड़े सिंपल लोग हैं। ये बच्चे बड़े मासूम हैं, इनकी तख्तियों, ये बच्चे पैदा होते हैं, इस तख्ती पर कुछ नहीं लिखा होता, ये हम इनकी तख्ती पर लिखते हैं और उसके बाद बच्चों को ख़राब कर देते हैं। बच्चे जो है यहाँ पैदा, बच्चा कौन पैदा होता है उसके माथे पर लिखा होता है कुछ? कुछ भी नहीं लिखा होता। आप अजान देते हैं, अगर मुसलमान पैदा हुआ तो अजान क्यों देते हैं आप? अच्छा है, अजान दी जाती है। इसी तरह क्रिश्चियन है वो उसको अपने निज़ाम से करते हैं, दूसरे मजाहब हैं वो अपने निज़ाम से करते हैं। तो मैं तो सब मजाहब की जो है इज्जत करता हूँ शायद।
0: जी, और यही ऐसे ही करना चाहिए यहाँ पर रह के। अब आप अगर आपको ये चीजें नहीं अच्छी लगती तो फिर यही है, आपको डैनिश कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप नहीं इनके कानून के मुताबिक चलना चाहते, सऊदी अरब में चलते हैं ना इनके कानून के मुताबिक, वहाँ कितनी सख्त सजाएं हैं, वहां तो आप चुप करके सर झुका के चलते हैं। जो उधर लोग जो काम कर रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जो भी हैं, जो कौमें वहां काम कर रही हैं, तो इधर आप क्यों जो है इनकी वायलेशन करने की कोशिश करते हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ कि उसमें कुछ लोग करते हैं और उन्हीं के ऊपर ये इन्होंने शिकंजा जो है ना टाइट किया हुआ है और कर रहे हैं इधर, और मजीद जो कानून लेके आ रहे हैं यहाँ पर जो गैर मुल्की हैं, चाहे कोई भी है। तो आपको भी पता है इस बात का,
1: इंशाल्लाह जो नए कानून आ रहे हैं इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
0: थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह।
1: सामान नाज़रीन, ये थे शायद नसीम जो के आपसे बात कर रहे थे। समझना, हमारी बात जो होती है सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, हमारा किसी से मुतफिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं, आप टाइम लेना चाहते हैं, तो आपके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं, आप अभी बात करना चाहते हैं आप अभी बात कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान सब। नाज़रीन, है वतन पाक वतन, ये आपने मिली नगमा सुना और उससे पहले आप बातें सुन रहे थे, बाकी जो हमारे मौजूद मेहमान थे। सब नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से, चूँकि हमारा नेशनल डे और दिन होता है, इसी तरह जिस तरह डेनमार्क का अपना नेशनल डे होता है, तो ये चूँकि लोकल हमारे प्रोग्राम होते हैं, सब लोग खुशी से बात करते हैं, अंदाज़ अपना अपना होता है और होना भी चाहिए हर आदमी को, चूँकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हर किसी को हक है। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हुए और सारे ही कामयाब प्रोग्राम थे अपने अपने तरीके से, तो हर प्रोग्राम की तारीफ़ करनी चाहिए। जो भी प्रोग्राम करता है उसके पीछे बड़ी मेहनत शामिल होती है, चाहे थोड़े बंदे हों चाहे ज़्यादा बंदे हों, लेकिन हर प्रोग्राम में मेहनत की जाती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि सब प्रोग्रामों में किसी ने अपनी पार्टी का जो केक नहीं काटा, उन्होंने 14 अगस्त का केक काटा। सबसे पॉजिटिव बात और खुशी की बात यह है कि सब जगहों पर केक काटेंगे और वही केक काटेंगे पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से। और एम्बेसी में बड़ा फंक्शन हुआ और उसके बाद आखिरी पाकिस्तान सोसाइटी का फंक्शन हुआ, उसके बाद 14 अगस्त के प्रोग्राम ख़त्म हो गए। हमारे प्रोग्राम तो 12 महीने जारी रहते हैं इंफॉर्मेशन के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया एक नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, जो उन्होंने सबसे हमसे ज़्यादा पाकिस्तान को देखा कि वो थोड़े लेट आए थे और हम थोड़े पहले आए थे, और हमसे कुछ लोग पहले आए थे, उनसे लोग कुछ पहले आए थे। जितना जितना कोई लोग देखता है उसको ज़्यादा चीज़ें याद आती है। मेरी मुराद है मनशा। मनशा, आपको खुश आमदीद कहते हैं अदर, आपकी आवाज़ पर एक बार फिर।
2: जी शुक्रिया राय साहब, आपका और आपके तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मनशा, मैंने थोड़ी सी प्रोग्रामों की, हमने नहीं देखा प्रोग्रामों में आपको, 14 अगस्त वाले दिन भी नहीं देखा एम्बेसी में, आप हमेशा सबसे पेश होते हैं।
2: जी राय साहब, मैं पाकिस्तान गया हुआ था समर वेकेशन के लिए और वापस आया हूँ मैं 10 अगस्त को, और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बहुत सारे प्रोग्राम मिस किए, लेकिन मैं प्रोग्रामों से वाकिफ रहा हूँ। यहाँ पर मेरे जाने के बाद भी डेनमार्क में इस दफा अगस्त के बहुत ज्यादा प्रोग्राम हुए, पाकिस्तान के हवाले से बहुत प्रोग्राम हुए, बहुत अच्छा लगा। मेले लगे, आमों के मेले लगे, और वो 14 अगस्त का जो प्रोग्राम बैसी में हुआ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। उसके हवाले से आपको एक हमारी बैसी ने भी तारीख रकम की है, किसी को शील्ड दी है तो वो खुश नसीब आप हैं, तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी, आपको बैसी ने शील्ड दी है
1: कारकर्दगी। आप लोग सब साथ का प्रोग्राम था, ये कम्युनिटी को शीट मिली है
2: जी। नहीं, आपकी जाति भी इसमें बहुत ज्यादा कारकर्दगी है जी, नुमाइंदगी है, तो इसके इसका बनता है आपका जी, डेनमार्क के लिए भी और बैसी के लिए भी आप चुने गए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक।
1: बहुत शुक्रिया मनशा, आपने हर चीज़ को, ज़ाहिर है पढ़े लिखे आप, नज़र रखते हैं हर चीज़ पे, और आप अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे। आप हमेशा छुट्टियों पे जाते हैं और अब बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए हैं, पर बंदे की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, बच्चे बड़े हो गए, बड़ी क्लासों में बच्चे क्लास शुरू करते हैं, तो वो लोग होते हैं जो अपनी कम्युनिटी के कामों में हिस्सा लेते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी फैमिली सिस्टम होता है, जो भी कम्युनिटी में थोड़ा मुतर्रक होता है सियासी लिहाज से, सोसाइटियों के लिहाज से, तो डेफिनेट हर चीज़ में मेहनत होती है मनशा
2: जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है राय साहब, आप देखिए ना जी, मेहनत का समर फल भी मिलता है। तो हमने देखा कि एम्बेसी का प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, एम्बेसी में बहुत सारे लोग थे, मैंने वो लाइव देखा, तो उसके बाद आपको शील्ड मिलना हमारे लिए एजाज की बात है कि आपको भी शील्ड मिली, और बड़ी अच्छी खुशी हुई हमें। और उसके साथ साथ जो जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम हुए, अल्बर्टा में प्रोग्राम हुआ, बेलारूस में प्रोग्राम हुए, स्कोवलन में प्रोग्राम हुआ, सब प्रोग्रामों से हम वाकिफ रहे, और इस दफा तो हमारी कम्युनिटी को बहुत सारे प्रोग्राम देखने का मौका मिला और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मौसम भी बहुत अच्छा था, गर्म था, आमों की बहार भी लगी रही, तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे मेले लगने चाहिए कि लोगों को हमारे जो पाकिस्तान है उसकी कदर का भी एहसास हो, उसकी वैल्यू भी नजर आए, और तरीके और राग में भी वो देखें कि पाकिस्तान हमें कैसे मिला। तो उनको जागर करने के लिए आप जैसे लोग, सोसाइटी और जितनी भी कम्युनिटीज यहाँ पर हैं, वो प्रोग्राम करती हैं, सजाती हैं प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा लगता है। हर प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं, हमें दावतनामा मिल जाता है। दावतनामा मुझे अभी भी मिले थे, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान था फैमिली के साथ, मैं हर साल पाकिस्तान छुट्टियां गुजारता हूँ बच्चों के साथ, तो आते हुए बस आने से कुछ दिन पहले वो मेरी तबीयत कुछ खराब हुई, तो वहां पहुंचा हूं यहां पर
1: खराब, तो आप भी तो आपने देखा है, आपकी एक्टिविटीज देखी हैं, आप भी फिर खाने में प्रेज नहीं करते, जगह जगह आप भी जाते रहे
2: जी। वो ऐसे था कि जी हम हर साल ही जाते हैं, तो खाने का तो जारी बात, दोस्त आए होते हैं जी, फिर दोस्तों को बुलाया, वो भी वेट करते हैं, तो सब मैंने भी शाया रखा हुआ था अपने फार्म हाउस के ऊपर, वहां पर भी मेरे पास भी 2 MNA, 3 MP, 1 वजीर और काफी और भी लोग आए हुए थे, उनका मैंने भी शाहिया दिया और बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए और मैंने खुद भी प्रोग्राम बहुत सारे किए और मुलाकातें भी बहुत सारी हुई हैं। बड़ा अच्छा लगा इस दफा, बस आते हुए राय साहब वो आने से कुछ दिन पहले ही तो बस वो नजर लग गए, कह सकते हैं आप ज्यादा प्रोग्राम में शामिल हो गए तो कोई तबीयत खराब होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत मजा आया, टूर बहुत अच्छा रहा।
1: मंशा आप देखें कि जो हमारे लोकल फनकार हैं, लोकल मीडिया है हमारा, और उसके बाद कोई बाहर से इस दफ़ा मेहमान नहीं आया, कोई वज़ीर नहीं आया, कोई बड़ी पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रामों में सफ़ीर मोहतरम जाते रहे और बाकी जो तंजीमात या पार्टी थी उन्होंने अपने तरीके से प्रोग्राम किया तो सारे प्रोग्राम कामयाब हो गए। क्या खर्चे करके लोगों को बाहर से बुलाना कोई मतलब कि आप इसको किस तरह देखते हैं?
2: मैं बिल्कुल आपकी जो बात इस इत्तेफाक करता हूँ कि बाहर से लोगों को बुला के उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त, होटल का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त और लहदा से टेंशन लो और हम पाकिस्तान जाएं तो वो पहचानते भी नहीं है, तो उनके लिए इतने खर्चे करने की जरूरत नहीं है। लोगों को एंटरटेन चाहिए, लोगों को प्रोग्राम चाहिए। आपने देखा कि अभी लगातार कितने प्रोग्राम हुए, सारे के सारे प्रोग्राम कामयाब हुए, लोगों ने भरपूर शिरकत की, लोगों ने अपनी नुमाइंदगी दिखाई वहां पर। इसका मतलब यह है कि लोगों को मौके चाहिए, लोगों को वो वाले जो पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी पर्सनैलिटी हो, कोई आप समझ लें कि वजीर हो या कोई भी हो, लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को एंटरटेन का मौका चाहिए। तो मौके फराहम किए गए तो देखें हर प्रोग्राम कामयाब रहा, उसमें कोई भी इतना वो नहीं था कि वो एक छोटी सी वो गुलूकारा थी वो इंग्लैंड से आई हुई थी, बाकी तो नॉर्मल प्रोग्राम था, लेकिन बहुत कामयाब प्रोग्राम था। ऐसे एल्बेसो में मैंने देखे प्रोग्राम 3-4 हुए और ऐसे बेलर में प्रोग्राम हुए, सब जगह प्रोग्राम हुए, कामयाब हुए। मैं नहीं समझता कि उन लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, उनके ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए, उनके लिए अपने आप को ऐसे ही मुश्किल में डालना चाहिए। हमारे लोगों को खुद ही यही लोग आते हैं तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ऐसे मेहमानों को बुला बुला कर खाने खिलाएं, खर्चे करें, पैसा जाया करें, वो इतनी ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है।
1: बड़ी अच्छी बात की है मंशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे खुलकर बातें होंगी।
2: जी राय साहब, आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो और जितने भी प्रोग्राम हुए मैं अटेंड कर पाया नहीं कर पाया, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत कामयाब प्रोग्राम हुए और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम ये पाकिस्तान के लिए और भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सेहत के लिए दुआ की, आप अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे मियां मंशा जिनकी आपने बात सुनी। ये नौजवान हैं, अक्सर बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं और खुलकर बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए सब नाज़रीन को पढ़े लिखा अरबी और भी बहुत सारे होते हैं। हर आदमी का बात करने का अपना अंदाज़ होता है, तरीक़ाकार होता है, रख रखाव होता है, टिकेट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, आपको टाइम चाहिए तो आपके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेशे खिदमत है।

बहुत सारे और जहाँ कभी पासपोर्ट पे बात हुई, जब पासपोर्टों में सख्ती हो रही है, कोई और आवाज बोल रही है। मैं जब पार्लियामेंट का मेंबर था, मैं इस पे और बोलता था। और इसके अलावा मैंने हमेशा अपने काम में ये कोशिश की है कि पाकिस्तान और डेनमार्क के टाइज जो है वो बेहतर से बेहतर हों। और ये वही बात होगी, पसे पड़ता बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। मैंने हमेशा अपनी कोशिश की कि मैं इस पे पाकिस्तान और डेनमार्क के हालात बेहतर से बेहतर करूं, क्योंकि डेनमार्क मेरा मुल्क है, मैं यहाँ की पैदाइश हूँ, ये मेरी मिट्टी है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे रूट्स हैं, वो भी मेरा मुल्क है, जो मोहब्बत है पाकिस्तान से मेरा हमेशा एक तल्लक रहेगा। इसके अलावा आप बताएं कि इसराइल पर है कोई मुझसे स्ट्रांग आवाज, वोकल आवाज है डेनमार्क में, सियासी आवाज जो इसराइल को कंडेम कर रहे हो, है कोई और कोई माइकल लाल इस क्या कहते हैं सियासी निजाम में जो ये अपनी पार्टी पॉलिसी रखे कि हुकूमत जो स्टेट ऑफ इसराइल है उसको डिसॉल्व किया जाए और फ्रॉम द रिवर टू द सी एक स्टेट बनाई जाए जिसमें सब रहे और सबके इक्वल राइट्स हो? है और कोई माइकल लाल इस जो सियासतदान बनते हैं जिसने जो ये बात करे? सब तो जब इसराइल बर्बरियत कर रहा था सबको पता है कि इसराइल के खिलाफ बोलना तो अपनी मौत को वो क्या उसे कहते हैं सियासी मौत है, सब अपने बिलों में वो छुप गए थे, चले गए थे। है कुछ सियासतदान जो इस तरीके से बोले? मैंने तो हमेशा खुल के बोला है, मैंने तो हमेशा खुल के बात की है। और आपको पता है कि जब श्री श्री रविशंकर आए थे और अपने डेलीगेशन लेके, और जब उन्होंने क्या कहते हैं अपने प्रोपेगेंडा करने आए थे, मैंने उस पे रातों रात जो है जो है कश्मीर सोसाइटी उनके साथ मैंने उनके साथ मिलके प्रोटेस्ट वहां पे किया और हमने इतना किया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी खबर आई, श्री श्री रविशंकर को जो है बयान देने पड़े क्या कहते हैं इसके ऊपर मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा हम 15 मुल्कों में गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, डेनमार्क में जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं। आपको याद है जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब आए थे, वहां पे मैंने सेक्रेटरीट के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के बाहर खड़े होके जब वो उनको वेलकम किया जा रहा था, वहां पे प्रोटेस्ट किया अपने पार्टी के साथ और कुछ लोगों के साथ। तो मैंने तो हमेशा खुल के बोला हूँ, मैं ये बड़ी आजी से कह रहा हूँ, अल्लाह पाक काम कराता है, ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है, अल्लाह पाक इज्जत देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तो अपने तौर पर अपने करियर में जब आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, मैं उस वक्त 18-20 साल का था, उस वक्त जब विंस्टा को लोग सपोर्ट कर रहे थे और विंस्टा जो है ये हमारा यहाँ नाटका बंद कर रहे थे, उस वक्त मैंने विंस्टा जो है जो जो उस वक्त जो हुकूमत जो आनसफ खासमुसन था उसको जो है, और मैंने यहाँ के अखबार में लिखा कि मैं इसको कंडेम करता हूँ। उसके बाद मैंने तो हमेशा अपने हमेशा बड़े वोकल और बोल्ड तरीके से मैं जहाँ पे हमारी शिनाख्त की बात आई, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी की बात आई, वहां पे मैं बोला, जहां पे मैंने समझा कि ये पॉलिसी जो है ये डेनमार्क को भी खराब कर रही है, वहां पे मैं अपने मुल्क डेनमार्क के लिए बोला, जहां पे मैंने समझा कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है वहां पे मैं बोला, पासपोर्ट की बात हुई मैं बोला, स्काफ की बात हुई मैं बोला, पुराने पाक की बहरुमती हुई मैं बोला, कश्मीर की बात हुई मैं बोला, हमेशा मैंने बात की। इसकी मैंने बड़ी सजा भी पाई है, इसकी मैं आप देख लें कि मैंने जब इसराइल के खिलाफ बोला हूँ और मैंने इनसे कहा कि इनकी जो लॉबी है यहाँ पे जिसका सख्त इन्फ्लुएंस है यहाँ पे उसको खत्म किया जाए, तो देखें उसके बाद मुझे कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो राजा साहब ये सदारती अवार्ड ऐसे नहीं मिल जाता कि आप कोई 50 बंदे बुला के फंक्शन करते हैं तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, या आप खुद मांगते फिरें तो आपको अवार्ड मिल जाएगा, इस तरह नहीं होता। ये बड़ी एक लंबी प्रोसीजर होता है, एक बहुत लंबा जो है एक एक एक सिस्टम होता है, उसके तहत आप गुजरते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं सोशल वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं और चंद लोगों को खाना खिला देना तो आप समझे कि ये आप कम्युनिटी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, ये भी अच्छे काम है, बड़े काम है, लेकिन इसमें सदारती अवार्ड नहीं मिलते। सदारती अवार्ड आपको तब मिलते हैं जब आप सियासी लेवल पे कोई हुकूमती लेवल पे आप कोई ऐसे काम हो, खा वो समाजी हो खा वो सियासी हो, लेकिन वो इतने इस लेवल के काम हो तो फिर आपको रिपोर्टें भी जाती हैं और लोग आपको नोट भी करते हैं। तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि वतो इज्जत मंतशाओ वतो जिल्लो मंतशाओ, अल्लाह पाक के हाथ में इज्जत है, अल्लाह पाक के हाथ में जिल्लत है, और मैं 100 बार अल्लाह के हाथ में झुकता हूँ, कहता हूँ या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल किया और तूने मुझे ये इज्जत बख्शी, मैं इस काबिल बल्कि था ही नहीं, तूने मुझे ये इज्जत बख्शी और मुझे ये अवार्ड दिया। और मैं आज बड़े वाज़ेह अल्फाज़ों में यहाँ सबको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अवार्ड जो है ना इसके असल हकदार जो है मेरे वालिद साहब है।

0: जिसका अपना दस्तूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम ममालिक की पहली और वाहिद एटमी कुव्वत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क है जो वो दिफाई सामान की खुद तैयारी करता है। चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर है जो तैयार है वो बनाया, अल खालिद टैंक बनाया, अजरार बनाया टैंक, यानी बहुत वो सारे वो भी हैं, उनसे भी आंखें बंद नहीं की जा सकती। वहां पर इंसाफ नहीं है, अदलिया है जो वो महकूम है, इदारे हैं जो वो कुछ बहुत तगड़े हैं, और जिन इदारों का काम कुछ और है, काम उनकी जिम्मेदारी कुछ और है, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। जो जो चीजें माइनस हैं उनको भी मानना चाहिए, जो अच्छाइयां हैं उनको भी मानना चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि अपने अपने लीडर की तरफ, जरूर हमें अपने जहां जहां किसी इंसान की अपनी मोहब्बत है वो अपने सियासी कायद के साथ जरूर रखे, लेकिन हम सब का मकसद है जो वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से मोहब्बत है जो वो हमारे दिल की आवाज होनी चाहिए। ये इसी तरह है कि जिस तरह एक ही जगह को रास्ते मुख्तलिफ जाते हैं, हमारा टारगेट है जो वो सबका वो पाकिस्तान है। कोई किसी सियासी जमात की तरफ से होकर जाता है, किसी दूसरी जमात की तरफ से अगर वो होके जाता है, अपने अपने कायदीन से जरूर मोहब्बत रखें। लेकिन मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि अब जहां पर आपको अपने लीडर से, अपने कायद से मोहब्बत है, तो इसी तरह जब दूसरे को भी उससे अपने कायद से मोहब्बत, एक दूसरे का एहतराम करें, अपने कायद से मोहब्बत जरूर करें। वो किसी बुजुर्ग ने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे थे जी, कि अपना छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना, यानी जो जो आपको पसंद है आप उसको फॉलो करें, और जो किसी और को पसंद है उसको ये हक जरूर दें कि वो उसको पसंद करे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए जो वतनियत है ये जरूरी है। हमारी मसाजिद से अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है वो वतनियत के फरोग के लिए इस्तेमाल होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
1: शहजाब, आपका बहुत
0: जी।
1: शुक्रिया, आपने काफ़ी कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। डेफिनेट इस वक्त आपकी और भी मसरूफियात होंगी। आखिर में आप अपनी कम्युनिटी को, अपने बच्चों को सियासी हवाले से, दीनी हवाले से क्या पैगाम देंगे?
0: जी मैं वही पैगाम जो मैं अपने लिए मुनासिब समझता हूँ वही मैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी यही कहूंगा, और दुआ गो कि अल्लाह पाक हम सबको, सबसे पहले तो हम सबको खसूसी तौर पर अपने घर वालों के लिए और अपनी औलाद के लिए वो दुआ मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह हमारे घर वालों को और हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना, और अल्लाह पाक हम सबकी औलादों को हम सबकी आंखों की ठंडक बनाए। तो अपनी औलादों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने कुर्बो जवार के लिए, अपने हमसायों के लिए कोशिश कीजिए कि अल्लाह की मखलूक में आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद जरूर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर कोई मुस्तहिक है आपकी मदद का, अल्लाह पाक ने आपको बहुत सारे वसाइल दे रखे हैं, तो आप जिसको चाहें, और कोशिश कीजिए कि जो आपके खानदान में से हैं, यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद किसी को उस तरह की ना तो माली मदद की जरूरत है ना कोई अखलाकी मदद की जरूरत है, तो वो जरूर करनी चाहिए। तो जहां जहां आपके कोई जानने वाले, आपके मिलने वाले, आपके खानदान वाले, अगर आप किसी अपने खानदान वाले की मदद करेंगे तो उसके आपको दो सवाब, डबल अजर मिलेगा। एक सिला रहमी का कि आपने अपने किसी रिश्तेदार की मदद की है, और दूसरा किसी मुस्तहिक को मदद करने का। तो अपने बच्चों पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, हम में से अक्सरियत है जो उन्होंने बहुत सारे संगे मील है जो अबू अबूर कर लिए हैं, हमारे पास रहायशें मौजूद हैं, हमारे पास अच्छा खाना पीने के लिए मौजूद है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे साथी हैं जो वो वेल ऑफ हैं, उनके पास गाड़ियां अच्छी हैं, घर अच्छे हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है। तो हमें दो चीजों का जरूर ख्याल रखना चाहिए, एक आखरत का कि कल का दिन जब आए तो हम सुरखरू हों उसमें, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, वो हमारा दीन है। और हमने दीन को फकत सिर्फ नमाज रोजे पे मुनसर कर दिया, नमाज और रोजा दीन का एक हिस्सा है, इबादत है जो ये सिर्फ दीन का एक हिस्सा है, इसके अलावा अखलाकियात बहुत बड़ी चीज है। और अखलाकियात के बारे में सबसे पहले सवाल है जो ये भी किया जाएगा कि तुम्हारा अखलाकियात है, तो एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से हम पेश आए, और हमारे जो मुआमलात हैं उसमें हम जितने हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ, हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ, और यकीनन सबसे पहले अपने घर के साथ हम अपने घर का सबसे पहले ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और जिनके साथ हमारा कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं भी, उनको उनके साथ भी अगर हम कोई अच्छाई कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए जरूरी है कि मुसलमान होने से, ईसाई होने से, यहूदी होने से, या कोई भी और किसी मजहब का फॉलोअर होने से सबसे पहले हम इंसान

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سمعین، موسم کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ تو ہو چکی، اسی طرح بادل بھی آگے وہ بھی ہو چکی۔ اب چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی موسم یا سیاسی بادل ہیں، یہ جو کافی لمبے عرصے سے چل رہے تھے، 14 اگست کے حوالے سے بھی، سیاست کے حوالے سے 14 اگست کا 14 اگست ہی ہوتا ہے، مینگو فیسٹیول ہی ہوتی ہے، اور جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں وہ بریکنگ نیوز ہی ہوتی ہیں، کمیونٹی کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کی ہوتی ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے تجزیہ نگار عدنان امین علی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کوئی بریکنگ نیوز بھی لیں گے۔ عدنان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے عدنان، میں نے چھوٹی سی تمید جو ہے وہ جلدی میں باندھ دیا، اور جس طرح موسم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہوتا ہے اور ہماری کمیونٹی کی سیاست بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے، جس طرح 2 دن آم ہوتے ہیں تیسرے دن آم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، تازہ نہیں رہتا، اسی طرح سیاست بھی جو ہے وہ 2 دن گزر جائیں تو وہ بھی پرانی ہو جاتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟
2: صاحب ایسے ہی ہے، دیکھیں جیسے آپ بھی منڈے والے دن کہہ لیں، آلموسٹ ساری وہ موسم کافی ٹھنڈا اور بارش کا ہوتا ہے، اور پھر گرمی بھی آتی ہے، ابھی موسم کیونکہ اب موسم تو چینج ہی ہو گیا نا، تو ستمبر بھی آ رہا ہے تو 10 دسمبر تک بھی گئے تو ختم ہو رہے۔ دوسری بات، جیسے آپ کو معلوم ہے پچھلے منڈے والے دن ساری آلموسٹ ویکیشن ختم ہو گئی، اسکول شروع ہو گئے، ڈونیشن شروع ہو گئے، تو آلموسٹ لوگوں کے 90% کام شروع ہو گئے، تو ایک قسم کا کہتے ہیں نارمل ویریئر سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کمون کے بجٹ آئیں گے، سینس بجٹ آئیں گے، مطلب کہہ لیں کہ ایک قسم کا جو رولنگ سسٹم ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، اور وہ اب چلتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، اور نارمل ڈیز وہ کیا کہتے ہیں ہوتے جائیں گے۔
1: یہ عدنان آپ نے بجا فرمایا۔ عدنان، یہ جو سارا سسٹم اب شروع ہوگا، جو پارٹیوں نے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، کیا وہ اس پر عمل درآمد ہوگا یا کہ بس الیکشن ختم ہو گئے تو بات بھی ختم ہوگی؟
2: یہ سب کوشش تو کریں گے نا کہ جو پالیسی جو ویکینسی بنے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے، اور آبویسلی کیا کہتے ہیں جو ان نے وعدے کیے ہیں ان پہ کوشش کریں گے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں پورا کریں گے تو آبویسلی پھر لوگوں میں کیا کہتے ہیں فرسٹریشن آ جاتی ہے، اور پھر لوگ ان باتوں پہ کرتے ہیں، اور پورے سمر کے اندر اس بات پہ والر بھی اٹھے ہیں کہ یہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، تو وہاں ایک دو پارٹیوں نے پھر کیا کہتے ہیں پورا جو سسٹم ہے، جو پورا ایریا ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے کچھ دنوں کے بعد سال کا نیشنل بجٹ بھی آ جائے گا، لوکل کمیونوں کے بھی بجٹ آ جائیں گے، تو پھر آبویسلی پتا چلے گا کہ کہاں سے پریٹی ہوتی ہے، کہاں سے نہیں ہوتی، اور پھر کہاں سے چیزیں چلتی ہیں، اور آبویسلی کیا کہتے ہیں لوگوں کی سوال جو ہیں وہ بھی سان کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کافی ٹھپ چیزیں رہی ہیں اور کافی مشکلات بھی ہیں، اور ہر چیز پہ کیا کہتے ہیں غور کریں گے، ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آبویسلی اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔
1: عدنان، الیکشن تو پارلیمنٹ کے کسی ٹائم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کمیون کے الیکشن تو ان کے ڈیٹ، مہینہ اور سال جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، اسی دن ہی ہونا ان کے ہوتا ہے، ریجن کا بھی، تو اگلی دفعہ آپ محسوس کرتے ہیں نئے لوگ آئیں گے یا یہی لوگ جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح کے کنٹینیو کریں گے؟
2: صاحب، میرے ہاتھ سے تبدیلی کافی آئے گی، اور کیونکہ لوگوں کو مسائلوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اب اس طرح ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ آپ جب الیکشن لڑتے ہیں نا تو آپ کو اس کمیون کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے، جس طرح ہر کمیون کا ایک ایریا ہوتا ہے، آپ بہت سارے وعدے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، مگر آپ کو یہ بھی اندازہ رکھنا چاہیے کہ آپ جب وعدے کرتے ہیں وہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز، آپ کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وعدہ ہر چیز پورے کرنے کے لیے پیسے بھی شامل ہونے چاہیے، और जैसे आपको मालूम है इस वक्त ये एक डिबेट जा रही है कि लोगों को पता होना चाहिए। आप इस वक्त देखें नेशनल प्लान था, आप एक चीज देखें ना जो एक शॉकिंग न्यूज है, वो ये है कि टेंस फॉल के पक्षी वंस अगेन जाग गई है और वो एक एजेंडा पे जागी हुई है कि उनका जो नीम क्या कहते हैं एजेंडा है कि मुसलमान काम कर रहे हैं। और इस वक्त वो एक किस्म का देखा जाए ना तो बहुत आगे जा रहे हैं। अभी तो बंदा कह सकते हैं कि इलेक्शन का टाइम है, पता नहीं, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो इलेक्शन नहीं आएंगे, मगर वो वंस अगेन क्या कहते हैं जाग गए हैं। अब ये देखें हमारे मसाई जो स्वीडन है, उधर जो उनकी उस तरह की पार्टी है तैनमस का मुखाड़ उसी तरह इनकी तैनमस में है, वो इस वक्त पहली दफा जो बंदा 20 साल मेजर नहीं था कर सकता कि स्वीडन के अंदर होगा, वो टेक्निकली जाके स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। तो अब एक किस्म का देखिए ना कि कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं जिसपे गौर करने की जरूरत है। कमिंग डेज में यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डेमोस्ट्रेशन आ रहा है 5 को, पता नहीं अब करते हैं कि नहीं करते, कुछ दिन के मसाइल हो गए थे मगर अभी तक वो प्रिपेयर है। तो इसलिए हर चीज को उनसे देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी को आप कैसे चेंज करेंगे। तो अब सर ये हो सकता है कि 2029 के जो कानून के इलेक्शन आए उसमें काफी नए लोग आए और काफी लोगों को देखने की जरूरत है और बंदे को गौर से ये करना चाहिए कि आप जिस कानून में रह रहे हैं 98 कानून है, 4 रीजन है जहाँ के इलेक्शन होंगे अगली बार, तो बंदे को देखना चाहिए कि बंदा उस तरह का टाइम और उस तरह का क्या कहते हैं दे सकता है और चीजों के मामले में पता भी होना चाहिए। आपको जैसे मालूम होगा इस समर के अंदर काफी हालात भी हुए हैं खराब, कुछ कमूनों में टॉस्टॉप होगी, एमस्टोन होगी, रॉस्किल होगी, टिंकिया होगी, और उन चीजों पर भी हमें गौर देना चाहिए कि वो चीजें क्यों हो रही हैं और उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं।
1: अदनान, अब ये जो है वो आम का जो मेला है मैंगो फेस्टिवल, वो भी एक रौनक जो है वो अब लगता नहीं है कोई और प्रोग्राम होगा, वो तो सारे ख़त्म हो गए। 14 अगस्त के हवाले से भी कोई 7-8-9 प्रोग्राम हुए, वो भी अख्ताम को पहुंच गए और अच्छा अख्ताम हुआ जिसे कहते हैं, खुशाइने खुशी वाला अख्ताम था, तादाद थी लोगों की, ये काम भी ख़त्म हो गया। और अभी जो क्या एमना बनता है, किस तरफ हमारी कम्युनिटी जाती है, किस सोच को लेकर आगे जाती है, क्या उन्होंने पाकिस्तानी सियासत करनी है या डैनिश सियासत करनी, आप इसको किस तरह एनालाइज कर रहे हैं?
2: सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ के बारे में अब ये सोचना चाहिए कि इस वक्त बात होती है मुसलमानों को टारगेट आने में भी, और हम लोग खुद भी क्या कहते हैं ना एक किस्म का क्या कहते हैं ना चैलेंज दे देते हैं और दे देते हैं। इस वक्त हमें ये भी फोकस देना चाहिए कि हम इस कल्चर का हिस्सा बन गए हैं, हम इस डिबेट को कैसे चेंज करेंगे। हम कोशिश तो करते हैं मगर फिर कुछ है ना कुछ हमारे लोग जो जिस बात को जरा थोड़ा उल्ट ले जाते हैं। जैसे ये अब कॉलेज जमेशन शुरू होने लगे थे और कॉलेज शुरू होने लगे थे, उसके अंदर हिजब तरीक ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके बारे में बहुत सारे सलचल चल गई थी, मगर मसला ये है कि बंदा उस चीज को चेंज भी कर सकता है क्योंकि उसको बंदा टेक्निकली कुछ बंदों ने उसको और में और चीजों में कह के ना उस बात को खत्म करने की कोशिश की थी, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें ना एक दो मिस्टर के दिन में हम उस बात को बहुत बड़ा कर दिया था जितनी बड़ी बात नहीं थी। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम सारे मुसलमान हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, जिस तरह हम मैंगो फेस्टिवल और ये फेस्टिवल इकट्ठे कर सकते हैं ना तो उस तरह हम इस पेज पे भी इकट्ठे आ सकते हैं। अभी आपको जैसे मालूम होगा कि हम इस मंथ जो है अल्लाह ताला हम लोगों को ये मंथ 12 नबी का है और हमारे नबी की सांग है, हमारे नबी की कहते हैं ईद और रोजों के बाद देखा जाए तो बहुत बड़ा मंथ है ये। तो इस तरह के मंथ के अंदर हमें इन प्रोग्राम में भी फिर चीजें बतानी चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर इस तरह का कल्चर है। तो ये चीजें भी बड़ी जरूरी हैं कि हम अपने कल्चर को बताएं और हम अपने इवेंट को बताएं। हमारे मैंगो फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छे होंगे और और मैंगो फेस्टिवल के अंदर जैसे आपको पता है ये जो माशाल्लाह अम्बेसी का प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर जैसे आपको पता है आप भी उधर थे, मैं नहीं था मगर मुझे पता है कि डेनमार्क की जो अम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर उसने भी पार्टिसिपेट किया है और वो भी आई है, उसने भी कल्चर देखा है और जैसे वो पाकिस्तान में काम कर रही है वो भी हमें पता है, थोड़ी बहुत उसने उर्दू भी सीख किया है पहले। तो इस तरह से होता है कि हम अपने कल्चर को स्प्रेड करें और हम अपने कल्चर को बताएं कि हम कुछ लोग हैं जो कल्चर को हास्टल कर लेते हैं मगर वो सेम चीज़ है, वो यहाँ पे भी है, इनके कल्चर में भी वो सेम प्रॉब्लम्स हैं मगर मसला ये है कि बस उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है।
1: अदनान, अक्सर बात होती रहती है कि जब आपसी रिकॉर्ड भी बात की जाए या बंद कमरों में गपशप की शक्ल में बात की जाए दोस्तों के साथ, तो सियासतदान भी ये कहते हैं, हमारे सियासतदान जो हैं कानून के हो गए पार्लियामेंट के साबका या मौजूदा, तो जब बात एंड पे जाती है तो उनसे सवाल किया जाए तो फिर ये जो कानून में सख्तियाँ आई हैं, आप तो बड़ी सहूलियात बताते थे, 70 में ये था, 71 में ये था, 81 में ये था, उस वक्त ये सहूलियात थी, ये सहूलियात थी, तो उन्होंने कहा फिर इन सारे जो कानून सख्त हुए इनका जिम्मेदार कौन है? तो हमने सर्वे भी कराया था, याद है आपको, तो हर बंदा कहता है ये हमारा कसूर है। जब हमारा कसूर है तो फिर हम सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते?
2: इस पर मैं वही कहता हूँ कि इंसान को अपनी गलतियों को सीखना चाहिए और गलतियों को अमीर करना चाहिए। कुछ गलतियां बंदा ऐसे कर देता है कि जो आपके सामने होती है उनको बंदा एडमिट करके रेकोनाइज करके आगे चला जाए और कंप्रोमाइज कर ले तो वो फायदा होता है। आप उन चीजों पर आप कि आप इस आपके पीछे इस एजेंडा से पड़े हुए हैं या आपके पीछे इस एजेंडा से पड़े हुए हैं तो फिर वो बात कभी खत्म नहीं होती। आपको बात को खत्म करके आगे चले जाना चाहिए, कहना चाहिए मुझसे गलती हो गई है, मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो मामला होगा वो ठंडा भी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा।
1: अदनान, आखिर में कोई आप मैसेज या कोई पैगाम देना चाहें कोई नौजवान बच्चों को, अब स्कूल खोले हैं, कॉलेज शुरू हो गए हैं, स्कूल भी नई क्लासें बच्चों को मिल गई हैं, ये सारा काम तो सिस्टम में चल रहा है, चांद सूरज ग्रहण भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब तो बच्चों ने बाकायदा जो है अपनी तालीम को जो है जारी वो सारी शुरू कर दी है।
2: मैं यही कहूँगा बच्चों को कि अपनी तालीम पर गौर दें, अपनी एजुकेशन पर गौर दें और जो आपको बेहतर लगे वो करें। आपका फ्यूचर है, आपकी ज़िंदगी है, आपने खुद डिसाइड करने का आपको फ्यूचर कैसा है। मैंने भी अपनी बेटी को यही कहा है जो जनरेशन में शुरू हुई है, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जो तुम करना चाहोगे हम उसमें सपोर्ट करें।
1: अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। सामाई नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो के अपना तजिया पेश कर रहे थे। समय हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी है, कोई राय देना चाहता है, अपनी बात करना चाहता है, तो उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
0: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: रेनोवेट और रिकंस्ट्रक्शन की है, तो ये उनका जो मेन जो टारगेट है वो ये गेटो खत्म करना। तो फिर ये था कि वो बड़ा ना गेटो होने की वजह से वो बड़ा एक ना लोकल सम्प होता है कि वो आइसोलेट हुए हुए थे, तो उसको जरा बहुत ना खुला किया गया ताकि ना वो इससे जो क्राइम वगैरह ना कम हुआ है। पहले था कि जैसे आपको देखा होगा, आपने देखा होगा हर जगह डेनमार्क में बड़ी ग्रीनरी होती है, बड़े दरख्त वगैरह होते हैं, तो उस वजह से ना को क्राइम वगैरह जो है ना वो ढका छुपा था। अब ये है कि अगर आप ढंग से आए देखें तो उन्हें वास वो सारा ओपन कर दिया है। अब जो दरख्त है वो दरख्त भी जो मोस्टली जो है ना उनको वो छांटी करके ताकि जो है ना पुलिस या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड इनके लिए अब इजी जो है ना हो गया वो पहुंचना। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें लोग जो हैं वो भी तावन कर रहे हैं, और जो आपका ये जो बलदियाती जो सारा ढांचा है उनके तावन से, और वरना मेरे हाल में मुमकिन नहीं था। तो लेकिन
1: बट
0: उड़ीसा
1: सर,
0: में
1: क्योंकि
0: जैसे
1: ये सारी चीज़ें आप जो डेनिश तरीक़ाकार से, जो सिस्टम से, कानून कायदे से कर रहे हैं, यहाँ पर ये पाकिस्तानी सियासत का तर्ज़ अमल इसमें नहीं होता। बंदे का, इंसान का अपना, यहाँ का जो जमहूरियत का तरीक़ाकार होता है उससे ये सारी चीज़ें अचीव की जाती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाया आपने, किसी का यहाँ बोर्ड नहीं लगा होता जैसे पाकिस्तान में, ये फलां गली फलां सड़क जो है वो तो कीर शाह साहब जो है ना ये मुकम्मल करेंगे, ये फलां नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल बजाय की सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हर चीज जो है ना वो काम कर रही है। तो बाकी अल्लाह का बड़ा करम है कि जब से मैं डेनमार्क आया हूँ, ये मैं समझता हूँ मेरे अल्लाह का फजल करम है कि वतन से मोहब्बत है, हम वतनों से मोहब्बत है। और जैसे अभी आपने पहले कहा कोपनहेगन आना, सफारतखाने आना, कोपनहेगन के जो इवेंट होते हैं उनमें शिरकत करना, ये मेरे लिए बड़ी फखर की
1: बट
0: बात
1: सर,
0: है।
1: उस वक्त कोई इश्तिहार लिखा जाता था जब पब्लिक में जाता था, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर पे तो लिखे नहीं जाते थे, हाथ से लिखे जाते थे, उसमें
0: जी,
1: ओडेंसे वालों का और कश्मीरी बिरादरी का जिक्र ना हो तो वो प्रोग्राम कामयाब भी नहीं होता था।
0: नहीं आज भी देखें मिसाल के तौर पे ना, मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज भी कोई भी प्रोग्राम है चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, अगर वहाँ डॉक्टर लामा इकबाल का जिक्र ना हो या उनकी तस्वीर ना हो या कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना का जिक्र ना हो या उनकी तस्वीर ना हो, पाकिस्तान का परचम ना हो, तो मैं तो वो किसी इस तरह के प्रोग्राम को मुकम्मल नहीं समझता। मैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब अभी देखे ना, जब ये प्रोग्राम था फ्राइडे को 14 अगस्त का था, तो उसमें कायदे आजम की ठीक है उनकी वो बानी पाकिस्तान है, लेकिन जो जो थिंकर एंड ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल, तो अगर उनकी भी तस्वीर हो जाती साथ तो चार चांद लग जाते, मुझे वो बड़ी कमी महसूस हुई है।
1: बट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने, मुझे पता है आप फैमिली के साथ सारे बैठे हुए हैं और अपना टाइम ये आप दे रहे हैं, आपने दिया। तो शाह साहब, आप हमारी तरफ से, अपनी तरफ से जिन लोगों ने हमें मुबारकबाद दी उनका शुक्रिया अदा कर दें।
2: ये राजा साहब, सबकी तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ, और चौधरी विलायत साहब भी बहुत खुश थे, उन्होंने मेरे से बात की, उनको भी बहुत खुशी हुई कि आपको ये शील्ड दी गई है और आप डिजर्व करते हैं। तो मैं आपको मेरे आर उस के लोगों से भी मुलाकात हुई थी, उडनसे के लोगों से भी, खासबाट साहब भी इधर, जितने लोगों से बात हुई है और सब ने खुशी का इजहार किया। अल्लाह ताला इस तरह के इवेंट्स होते रहे और जो हमारी दूसरे लोग हैं जो और भी डिजर्व करते हैं उनको इस तरह की शील्ड्स और सर्टिफिकेट जो है वो एम्बेसी की तरफ से मिलने चाहिए, ताकि लोगों की, आने वाली नस्लों की जो है वो, शुरुआत तो आपसे हुई है, शुरुआत तो आपने की है, क्योंकि जो तगमे मिले हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, जो शील्ड है ये एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने दिया, तो पहली दफा आपको शील्ड मिलने से सबकी हौसला अफजाई हुई है और लोग जो है वो बेहतर से बेहतर काम करेंगे ताकि कल को उनको भी इस तरह की शील्ड जो है या इस तरह के सर्टिफिकेट्स मिले, तो ये एक बहुत खुशानदा बात है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मुसलमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मुसलमान, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मुसलमान इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मौजूद सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामईन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। माज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने आयरलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे, डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندرہ لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائند آباد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम